0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। इब्ने इंशा की कलम और जगजीत जी की आवाज में हमने सुनी ये खूबसूरत गजल। और नए साल के इस नए से मिर्ची महफिल में आपका इस्तकबाल करता है आपका ताशी। हाँ जी, और चांद का इस्तेमाल तो आपने कई बार सुना होगा शायरी और कविताओं में, लेकिन आज आपको बताऊं चांद का एक पर्यायवाची, बोले तो सिनोनिम, जिसका इस्तेमाल करके भी कई सारे शेर हुए हैं, और वो लफ्ज है महताब। अब इसका इस्तेमाल आप देखें दो शेरों से। पहला अजहर इनायती साहब की कलम से लिखते हैं कि हर एक रात को महताब देखने के लिए मैं जागता हूँ तेरा ख्वाब देखने के लिए। वाह जी वाह, हबीब जालिब के यहाँ भी बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है चांद के सिनोनिम महताब का। गजल के दो शेर मुलायजा फरमाएं कि हमारी भी संभल जाएगी हालत, वो पहले अपनी जुल्फें तो संभालें, निकलने को है वो महताब घर से, सितारों से कहो नजरें झुका लें। आए हाय, अब चांद से डिराइव्ड एक और लफ्ज है चांदी, जिसके बड़े खूबसूरत इस्तेमाल के साथ आप सुने जफर गोरख पुरी साहब का लिखा अगला आइकॉनिक नगमा, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। पंकज उदास साहब की आवाज में सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: बाकी सब गंगा।
1: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर, डाउनलोड नाउ।
2: हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी
3: विवेक जी।
2: हाँ जी बताइए।
3: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं? विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास लुआसे थे, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखता
3: हूँ, थोड़ा ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे।
3: क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं फिर भी क्या, मतलब काफी चीखियों की आवाज है, क्या हुआ क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
3: अच्छा अच्छा।
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
4: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: हाय, ये दिल, ये पागल दिल मेरा, मोहसिन अली नकवी साहब की कलम और गुलाम अली साहब की आवाज में सुनी हमने ये खूबसूरत गजल सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका ताशी आपको रूबरू करवाए उर्दू के पहले सबसे बड़े शायर जिन्हें खुदाए सुखन मतलब शायरी का खुदा कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन मीर तकी मीर साहब की। 1810 के लखनऊ में इनका जन्म हुआ और लफ्जो मानी के जादूगर बेमिसाल शायर मीर तकी मीर उर्दू गजल का वो प्रेत हैं कि जो उसकी जकड़ में आ जाता है जिंदगी भर वो उसके अधीन ही रहता है। बड़े आइकॉनिक शेर रहे हैं उनके जिनमें से कुछ आपके नजर कर रहा हूं। लिखते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। तदबीरें मतलब टैक्टिक्स। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। एक और मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है उनका कि होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर। होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर क्या रब्त मोहब्बत से उस आराम तलब को। वाह जी वाह, उनकी शायराना काबिलियत का इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि जमाने के मिजाजों में बदलाव के बावजूद उनकी शायरी की महानता का सिक्का हर दौर में चलता रहा। खैर, बहुत हुई बातचीत, ज्यादा वक्त जाया करे बगैर राजेश रेड्डी साहब की कलम और हरिहरन जी की आवाज में सुनते हैं अगली गजल हल्का सा एक नशा सा सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर, डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नुसरत साहब की आइकॉनिक आवाज में हमने सुना ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और आपका ताशी है आपके साथ। और दर्द हल्का हल्का हो या सुरूर, दोनों ही हालतों में दर्दीले लोगों को बड़ा मजा आता है। गुलजार की वो गजल याद आती है मुझे कि दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है, आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है। वाह जी वाह। और ये जो हल्का सा दर्द है ना, कुछ तो रिलेशन है इसका और रात का। जैसे जैसे रात और काली होती जाती है, ये दर्द और बढ़ता जाता है। अगला नगमा सुने मखदूम मोहिउद्दीन साहब की कलम, लता जी और तलत अजीज की आवाज में, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट और उससे भी उम्दा गजल हमने सुनी भूपिंदर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में। और अब वक्त आ गया है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: की। मिर्ची महफिल में आपका ताशी आपको सुनाए एक गजल जो उसके जहन में अटकी पड़ी है बिल्कुल। और ये जो गजल है ये बहादुर शाह जफर साहब ने लिखी थी और इसको गाया है मेहदी हसन साहब ने। एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से, मेरी बड़ी पसंदीदा है, तो अगर कुछ भूल चूक हो माफ करिएगा। पेशे खिदमत है सिर्फ आपके

इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए अगला नगमा पेश है आपके लिए शफकत अमानत अली की आवाज में, फिर ले आया दिल। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात सुन।
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे, जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो,
3: जब डर गया था
2: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
2: वाली बातें कर रहा है क्या?
3: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहे। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
2: राइट नंबर ले
3: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
2: यार।
4: मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मुजफ्फर वारसी की कलम और हरिहरन साहब की आवाज में हमने सुनी गजल। झूम ले हंस बोल ले प्यारी, अगर है जिंदगी सांस के बस एक झोंके का सफर है जिंदगी। और मिर्ची महफिल पर अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि अपनी डायरी के कुछ सफ़े पलटूं और आपको सुनाऊं एक पुरानी याद। हमारी जो हिंदी टीचर थी ना कविता मैम, वो बचपन में एक फ्रेज सिखाया करती थी कि जीवन क्षण भंगुर है, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन हुआ लाइफ इज मोमेंट्री। ठीक है, और जिंदगी के सुख दुख, हंसी और आंसू, शोहरत और बदनामी, सब कुछ फेड हो जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं जहन में घर कर गई। और थोड़े बड़े हुए तो जफर इकबाल साहब को पढ़ा और उनका ये बड़ा ही बेहतरीन शेर मुझे याद आता है इसी बात पर। लिखते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ओफो, मतलब इतना सटीक धारदार शेर लगता है ना मुझे ये। खैर, आए अगला नगमा सुनते हैं जावेद अख्तर साहब की कलम से, चित्रा और जगजीत जी की आवाज में, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर, डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जफर गोरखपुरी साहब की कलम और पंकज उदास जी की आवाज में हमने सुना नगमा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे। किस्सा कॉर्नर
1: कि आपका ताशी सुनाए आपको आज का किस्सा, जो आ रहा है जिगर मुरादाबादी साहब की जानिब से। किस्से का नाम बंदों की खुशी। एक बार जिगर, शौकत थानवी और मजरूह सुल्तानपुरी दोपहर के वक्त कहीं काम के लिए बाहर निकले थे, तो इरादा किया गया कि नमाज अदा कर ली जाए। शौकत साहब एक काम के लिए चले गए, जिगर साहब मस्जिद के बजाय एक रेस्टोरेंट में जा घुसे। मजरूह ने कहा, जिगर साहब ये मस्जिद नहीं रेस्टोरेंट है। जिगर ने जवाब दिया, मुझे मालूम है, सोचा कि वक्त तंग है, अल्लाह को तो खुश कर नहीं सकता, उसके बंदों को ही खुश कर लूं, आइए। वाह जी वाह, काश हमारे दोस्तों में भी इतना सुहूर होता जिगर साहब जैसा, कि बिना मांगे पार्टी दे देते, है कि नहीं। खैर मजाहिया बातों से आगे बढ़ते हैं लता जी की आवाज में रेंडर्ड एक खूबसूरत नगमे की ओर। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: वाह, अहमद फराज की कलम और मेहंदी हसन साहब की आवाज से सजी ये खूबसूरत गजल रंजिश ही सही हमने सुनी सिर्फ मिर्ची महफिल पर, और आपका ताशी है आपके साथ। और अब जब भी मैं ये गजल सुनता हूँ ना, मुझे लगता है लोग कितने अजीब होते हैं। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ आ, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, मतलब दुख भी सहने को तैयार है। पीरज़ादा कासिम साहब की एक बड़ी रिलेटेबल गजल याद आती है मुझे। वो लिख गए कि गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। दर्द में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने। हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। अरे यार, ये तो वही बात हो गई कि ब्लॉक करके फिर अनब्लॉक कर दिया। खैर जानी, ऐसे ही अजीब अगर आप भी हो ना, तो आइए साथ मिलकर सजाएं ये खूबसूरत महफिल सिर्फ मिर्ची पर अपने ताशी के साथ। इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: ठुकराओ अब की प्यार करो, मैं नशे में हूँ। शाहिद कबीर साहब की कलम और जगजीत जी की आवाज से सजी ये उम्दा गजल हमने सुनी सिर्फ मिर्ची महफिल पर, और आपका ताशी है आपके साथ। और कोई जब किसी शख्स को छोड़ जाता है, हर इंसान अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम लेता है, अलग अलग वक्त लेता है उस सदमे से उबरने के लिए। लेकिन अगर एक बात मैंने पाई है वो ये है कि उबर सब जाते हैं। स्वप्निल तिवारी साहब का एक शेर जहन में आता है जो इस नए साल और बिछड़े यार दोनों मौजू पे फिट बैठता है। वो लिखते हैं कि और कम याद आओगी अगले बरस तुम अब के कम याद आई हो पिछले बरस से। वाह, मैं पता है लगभग भूल गया था इस शेर के बारे में, मगर उसकी याद आई तो साथ ही ये भी आ गया। खैर, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में ये अगला नगमा सुने आप। इट्स वेरी आइकॉनिक ऑब्वियसली। सानू एक पल चैन ना आवे, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: हेलो
2: हेलो
1: कौन
2: हेलो विपिन
1: कौन बोल रहा है?
2: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
1: हाँ पासपोर्ट अप्लाई किया था।
2: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
1: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
2: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पहाड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे हो, जरा सा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है। आप बताओ कब किया था?
1: पहले किया था।
2: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी।
2: भैया इस तो बोल, अभी करवट लिए तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
1: जाना जरूरी है?
2: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई।
2: अच्छा तो दुबई जाना है?
1: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
2: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
1: हाँ ठीक है ठीक है,
2: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
1: आपने सही कह रहा
2: है। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
1: बताओ।
2: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था कैसी हो
1: क्या?
2: वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं।
1: मैं तो पागल है क्या?
2: चिल्लाओ मत, ठीक है मैं रखता हूँ।
1: करवा देना भी है
2: आपसे। मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
1: सॉरी सॉरी सॉरी।
2: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
1: ओके ओके,
2: आई लव यू।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: शहरयार की कलम और तलत साहब की आवाज में सुनी हमने खूबसूरत गजल जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें सिर्फ मिर्ची महफिल पर और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आपको मुखातिब कराएं हमारे आज के लव्स से रफ्ता जिसका मानी होता है स्लोली या धीरे अब तस्लीम फाजली साहब की लिखी और मेहदी हसन साहब की गाई मशहूर गजल का ही एग्जांपल ले लें शेर है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए मतलब धीरे धीरे वो मेरी हस्ती मतलब बीइंग का सामान हो गए रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए और अब एक और शेर देखें कुमार बाराबंकवी साहब के जानिब से लिखते हैं कि भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए आए हाय तो ले जस्ट लाइक दैट आपके उर्दू लफ्जों के आर्सेनल में जुड़ गया है एक नया लफ्ज रफ्ता मानी स्लोली ऐसे ही और लफ्जों को समझने जानने के लिए जुड़े रहें मिर्ची महफिल से आपका ताशी है आपके साथ इट्स हॉट

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: आनंद बख्शी जी की लिरिक्स और सुरेश वाडेकर साहब की आवाज में हमने सुना सनी मूवी से नगमा और क्या अहद वफा होते हैं। और मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और इश्क मेरे ख्याल से ना वो बीमारी है जिसमें शख्स जब पड़ता है तो उसका इलाज ढूंढने के बजाय और बीमार होना चाहता है। अकबर इलाहाबादी साहब का एक बड़ा उम्दा शेर है कि इश्क के इजहार में हर चंद रुसवाई तो है, पर करूं क्या, अब तबीयत आप पर आई तो है। मुनव्वर राणा साहब के यहाँ भी इश्क को एक बीमारी की तरह ट्रीट किया गया है। वो लिखते हैं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। उफ, अगली गजल में आप मुलाकात करेंगे एक बीमार से जो पूछ रहा है दूसरे से कि तुम भी बीमार हो कि नहीं। कैफी आजमी साहब की कलम और जगजीत जी की आवाज से सजी ये खूबसूरत गजल, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, फरीदा खानम जी की आवाज में सुनी हमने ये खूबसूरत गजल। समय हो चला है मेरे जाने का, लेकिन ऑब्वियसली जाने से पहले
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आप हैं अपने ताशी के साथ, और ये मेरा ख्याल है कि सच्चाई सबसे ज्यादा उदास होती है। कुछ गजलें जो सबसे ज्यादा सच कह रही होती है ना, सबसे ज्यादा ट्रूथफुल साउंड करती हैं, वो ऐसे कचोट देती हैं अंदर से ना एकदम। ये गजल उनमें से एक है और न जाने क्यों मेरे जहन में अटकी हुई है। तो आज रात आपके नजर है जगजीत सिंह जी की ये खूबसूरत गजल मिर्ची महफिल पर।

0: कोई जवाब है आपके पास?
1: मेरे पास तो नहीं है दोस्त, तो इसलिए मैं चुपचाप यहां से अपना सामान बटोर के चलने वाला हूँ। एक गजल के हवाले करके आपको छोड़ जाने वाला हूँ मैं। अगर आपको मुझसे कुछ बातचीत करनी हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मिर्ची महफिल सुन रहे थे आप। आपका ताशी था आपके साथ। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vjet bala burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: हां जी
2: विवेक जी.
1: हां जी बताइए.
2: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ. विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं.
1: ऑफ कोर्स.
2: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े. अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी. विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लासे थे, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना. और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे. देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की. देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए.
1: हाँ ठीक ही कह रहे हो.
2: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है. अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं.
1: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने. अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने.
2: अच्छा
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता. हमारा घर है, हम जो मर्जी करें.
2: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखता
2: हूँ, थोड़ा ख्याल रखना. मिलते हैं किस दिन?
1: हाँ हाँ जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे.
2: क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार.
2: नहीं फिर भी क्या, मतलब काफी चीखियों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की.
2: अच्छा अच्छा.
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया.
2: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: हाँ अभी
2: इन्होंने चिल्लाई
1: तो फिर बुरा बहुत
2: होता. आप कह रहे हो चिल्ला के बोला क्या आपको, आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर.
1: मजे आ रहे हैं,
2: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
1: अरे तेरे को मजा आ रहा है यार, तू मजे ले रहा फोन करके.
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: कहते हैं आर डी बर्मन छोटे होते जब रोते थे तो पांचवें सुर में रोते थे, सारे गामा पा पा वाला जो सुर होता है उसमें। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आर डी बर्मन दी आर डी एक्स ऑफ म्यूजिक। और वो जिस भी सुर में रोते हो, जो असला बारूद उन्होंने म्यूजिक का क्रिएट किया है ना, वो फिनोमिनल है। सुनिए पुराने इंटरव्यू में उन्होंने अपने पहले सुपरहिट गाने, इस ट्रेंड सेटिंग गाने के बारे में क्या कहा था।
1: ये एक कमाल चीज है, इतने बड़ी पिक्चर का पहला गाना ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, वो गाना दोनों ने मिलकर डुएट गाना गाए, और वन टेक ओके होता है लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ होगा कोई गाना। ये है साहब कमाल की किस्सा जो हमारे लाइफ में एक यादगार सी चीज है। नासिर आई टेल यू वन थिंग, दिस म्यूजिक इज गोइंग टू ट्रेंड सेटिंग म्यूजिक है, एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। तो मैं तो एकदम ऐसे गिर पड़ा, बाप रे बाप इतनी बड़ी बात बोल दी, और कौन कह रहा है, शम्मी कपूर कह रहा है। तो मुझे ये तो मालूम नहीं साहब कि ट्रेंड सेट हुआ ना क्या हुआ ना हुआ, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि उसके बाद काफी लोग जैसे ब्रास ओरिएंटल सॉन्ग्स जिसको कहते हैं, थोड़ा जैज टाइप की म्यूजिक, थोड़ा सा उस टाइप की म्यूजिक, रॉक टाइप की म्यूजिक, वो इंडस्ट्री में काफी लोग ने शुरू किया।
0: तो सुन लेते हैं ट्रेंड सेटिंग गाना ऑन आर डी बर्मन स्पेशल पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है?
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
4: ओ मेरी बात
3: कौन
4: सुन,
3: बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो जब डर गया तो तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
3: फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने
3: वाली बातें कर रहा
4: है, मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर, पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
3: राइट नंबर ले
4: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर,
4: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
3: यार।
5: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली।

0: धोक दूं पाए लागू आरडी बर्मन साहब के। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये गाना हैंड्स डाउन उनका वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पोजिशंस है। सत्ते पे सत्ता का ये गाना, जिसमें बहुत सारी आवाजों में खुद आरडी बर्मन की आवाज भी थी एज अ सिंगर, और उससे जुड़े एक इंसिडेंट के बारे में सुनिए पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: एक्चुअली मैं प्रोफेशनल सिंगर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं जब भी गाता हूँ कुछ न कुछ एक स्टाइल बनाने की ट्राई करता हूँ, कुछ एक अलग तरीके की आवाज निकले। मुझे याद है कि एक गाना जो किया था रफी साहब के साथ में गाया था, यमा यमा जो गाना किया था, जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रहा था उस दिन मेरा वॉइस ठीक नहीं था, मतलब गला खराब। तो रफी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आज शूटिंग के लिए गा दो, बाद में हम डब करेंगे। तो शूटिंग के लिए गा दिया, तो शूटिंग हो गया, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के ऊपर पिक्चराइज हो गया, हमने देख भी लिया। जब रिकॉर्ड रिलीज का टाइम आया, बोले कि रफी साहब को कहा कि वो रिकॉर्ड रिलीज हो जाएगा, मैं बेसुरा गाया हूं, तो प्लीज ये हाँ जरूर एक डेट फिक्स करते। लेकिन इट्स सच ए सैड थिंग कि वो गा नहीं पाए, इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद वो गुजर गए, तो वो वैसे के वैसे गाना रह गया।
0: तो चलिए इन दोनों लेजेंड्स को याद कर लेते हैं ये गाना सुन के। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ।

0: बहुत हैरत की बात है कि आरडी बर्मन जैसे म्यूजिशियन को अपने करियर में कुछ खास अवार्ड्स नहीं मिले। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बारे में ऐसा कहा जाता था कि इन अवार्ड्स में काफी मैनिपुलेशन होता था या बायस भी होता था, और इन सब चक्करों में आरडी बर्मन काफी सीधे साधे भोले भाले रह जाते थे। इनके ऊपर ये एलिगेशन भी लगाया जाता था कि ये मॉडर्न म्यूजिक वाले गाने ज्यादा बनाते हैं, क्लासिकल वाले नहीं। पर ये बंदा तो मस्त मलंग था, मन की करता था। इस बारे में सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में इन्होंने क्या कहा था।
1: मैं बहुत कुछ क्लासिकल तो सिखा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं राग झिंझोटी में मैं और मालकोस में ये कोशिश की, ऐसा तो हम कहते नहीं। हमको जो दिमाग में आता है और जो सुनने में अच्छा लगता है वो हम बनाते रहते हैं। वो कभी कभी राग में भी आ जाता है, कभी राग भ्रष्ट भी हो जाता है।
0: राग भ्रष्ट हो जाता है कितने क्यूट है यार। एक बार सुनिए अपनी टूटी फूटी हिंदी बोलने के बारे में एक बार क्या कहा था इन्होंने।
2: और माफ कीजिए मेरा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ होता है क्योंकि मैं बंगाली हूँ।
0: वेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो जुबान बोलते थे वो सबको समझ में आती थी। प्यार और संगीत की पुरानी जीन्स पर आज आरडी बर्मन स्पेशल, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली

0: ये जोड़ी जैसी जमी थी ना, ऐसी जोड़ी कोई जम नहीं सकती है फिर से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, द लेजेंडरी जोड़ी ऑफ आरडी बर्मन एंड आशा भोसले जी। आशा भोसले जी के एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था कि आरडी उनके लिए क्या थे।
1: एक तो बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, दूसरा बहुत अच्छा फ्रेंड और बड़ा ही मूडी फ्रेंड। उसकी एक छोटी सी बात बोलते उसके सामने चाय रखा तो पहले उसमें पानी डाल देता था और फिर पीता था। तो मैं हमेशा सोचा करती थी फिर चाय क्यों मंगा, ऐसे अच्छा गर्म पानी मंगाता या ठंडा पानी मंगा। लेकिन ऐसे उसके अजब मूड थे, सिगरेट जला के रखेगा वो सिगरेट पूरी जल जाएगी वहीं पड़ी पड़ी, फिर दूसरी जलाएगा, ऐसे सिगरेट जलाता रहेगा। लेकिन सोच में इतना मूडी था। पंचम ऐसा दोस्त था कि ये सुन ये गाना कैसे है, ये सुन ये साउथ अमेरिकन म्यूजिक सुन, अभी अफ्रीकन सुन, अब ये सिंगर। और इसमें हम पूरी रात इसके निकल जाती थी तो मैं बोलती थी पंचम मेरे को कल गाना रिकॉर्ड करना है, तुम तो सोते रहोगे लेकिन मेरे को बैठे बैठे गाने सुनना, फिर से लगाना फिर से लगाना।
0: तो फिर से लगा देते हैं ये आइकॉनिक गाना आशा भोसले आर डी बर्मन की आवाज में, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, कारवां फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

गया। देखो देखो वो आ गया।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: आरडी वर्मन 1961 से फिल्मों में इंडिपेंडेंटली म्यूजिक दे रहे थे, लेकिन सक्सेस उनके हिस्से में आया 1966 में विद तीसरी मंजिल का म्यूजिक। क्या ही आइकॉनिक ट्रेंड सेटर, फेनोमिनल म्यूजिक है वो। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था कि कैसे उनको इस फिल्म के म्यूजिक का ऑफर मिला और उसके बाद क्या क्या मुश्किल आई।
1: एक दिन क्या हुआ, मिस्टर नासिर हुसैन जिनका नाम है, उन्होंने मुझे खबर दी, कहने का आप आइए मुझे सुनाइए, आपका कोई अगर स्टॉक वॉक हो तो उस जमान बहुत हम लोग स्टॉक रखा करते थे। गया जाके उनको सुनाया, हमारे पास जो जो गाना था ट्यून सुनाया, ऐसा कुछ किया तो उनको बहुत पसंद आया। क्या था, उनके जो हीरो था वो देवानंद साहब, कुछ गड़बड़ हुआ, वो पिक्चर उन्होंने किया नहीं। उसके बाद पता लगा कि शम्मी कपूर हीरो हो गया। अब शम्मी कपूर हीरो हो गया तो शम्मी कपूर का तो पूरा किंग था ना, शंकर जी थे, जयकिशन जी थे, सब थे, तो मैं समझा कि मेरा तो पत्ता कट गया। नासिर साहब ने कहा कि देखो भैया ये तुम्हारा एक टेस्ट है ना, आपको जो जो गाना है वो आपको शम्मी कपूर को सुनाना पड़ेगा। तो शम्मी कपूर जी आए हमारे म्यूजिक सेटिंग में, आए बोले पंजाब सुनाओ। तो हमने पहली एक फोक ट्यून सुनाया, वो नेपाली गाना था, इतना सुना है। तो सेकंड लाइन से शम्मी कपूर गाना शुरू कर दिया।
0: शम्मी कपूर क्या, पूरी दुनिया वाइब कर रही थी इस फिल्म के म्यूजिक के साथ और करती है आज तक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आरडी बर्मन स्पेशल।

0: होता है।
1: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची
2: मिर्ची
3: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: हेलो
4: कौन?
5: हेलो विपिन।
4: कौन बोल रहा है?
5: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
4: हाँ पासपोर्ट अप्लाई किया था।
5: आहिस्ता बोलो, कब अप्लाई किया था आपने?
4: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
5: भाई मानक मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
4: अभी पहले ही किया था।
5: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
4: ऑनलाइन की थी।
5: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
4: जाना जरूरी है?
5: कहाँ जा रहे हो?
4: दुबई।
5: अच्छा तो दुबई जाना है?
4: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
5: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
4: हाँ ठीक है।
5: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
4: आपने एकदम सही कह रहे
5: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
4: नहीं बोलना।
5: भाई साहब एक बात बताऊँ?
4: बताओ।
5: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
4: मैं तो पागल है क्या?
5: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
4: करवा देना भी है आपसे।
5: मरवाओ के क्या उठ जाएंगे?
4: सॉरी।
5: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
4: ओके।
5: आई लव यू।
4: आई लव यू टू।
6: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
1: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: हिंदी फिल्म संगीत के सबसे यूनिक म्यूजिक कंपोजर आरडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वेल, इस यूनिक म्यूजिक कंपोजर की फिल्म इंडस्ट्री में दो फिल्म मेकर्स के साथ बहुत लंबी एसोसिएशन थी। एक तो नासिर हुसैन साहब, जिनके साथ तीसरी मंजिल से इनके सफलता की शुरुआत हुई। ये दूसरे कौन थे, इनके बारे में सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में आरडी बर्मन ने क्या शेयर किया था।
1: ग्रुप देखो, एक नासिर साहब के साथ तब से मेरा जम जोड़ हो गया। एक मुझे और एक फकर है कि जैसा शंकर जयकिशन जी थे, काफी लोगों के साथ उनका ट्यूनिंग था, उसी तरीके से मेरे साथ ट्यूनिंग भी एक आदमी के साथ हुआ। एक प्रोड्यूसर अजीब प्रोड्यूसर है, जिसके पहली पिक्चर हमने की थी द ट्रेन, मेरे ख्याल से 65-67 की बात होगी शायद। तब से लेके उन्होंने जितने पिक्चर बनाए, दर्जन के ऊपर हो गया पिक्चर, मैं उन्हीं के साथ हूँ, रमेश बहन, दैट्स अ रिकॉर्ड। ये मेरे लाइफ का एक कमाल रिकॉर्ड है।
0: द ट्रेन फिल्म का जिक्र इन्होंने किया। द ट्रेन वही फिल्म है जिसके सुपरहिट गाने का कवर वर्जन बना बना के पब्लिक हटती नहीं है, थकती नहीं है, इतना सुपर फिनोमिनल गाना है वो। आनंद बख्शी का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज, आर डी बर्मन का कॉम्पोजिशन, सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ only

0: आरडी बर्मन ना म्यूजिक के लिए ऐसे भूखे प्यासे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसीलिए नए नए तरीके सीखते रहते थे। सुनिए एक बार एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या इंसिडेंट शेयर किया था जब म्यूजिक कंपोजर रोशन साहब उनके घर आए थे।
1: तो एक दिन रोशन जी घर पे आए, पिताजी के साथ गुफ्तगू करते रहे, तो पिताजी ने बहुत तारीफ कर दी, भाई तुम्हारी ये पिक्चर देखी, ममता बहुत अच्छा गाना बनाया। ये उन्होंने कहा दादा आपको शायद मालूम नहीं एक बात सीक्रेट, तो उन्होंने गाना किया था रहे ना रहे हम, उन्होंने कहा कि आपके एक पुराना गाना है उसमें से हमने मीटर ली, मीटर मतलब छंद, तो एक गाना उन्होंने गा के सुनाया। क्यों रोशन जी ने

बोले कि दा आपका ये इतना प्यारा गाना था, देखिए हमने बना दी। ये सब क्या स्कूलिंग है, तब से हमने क्या किया, कोई गाना हिट गाना हो, ये सब गाने के जो मीटर होता है ना, उसमें से हम लोग कुछ गाने बनाने की कोशिश करते। मिसाल के तौर पर यही गाना जब ठंडी आय का रोशन जी ने बना दिया, रहे ना रहे हम, मैं दूसरा बोल से गाता।

0: रहे ना रहे हम, छंद सेम है, सब कुछ वही है। इस तरीके से हम लोग नए नए गाने बनाने की कोशिश करते हैं।
1: सागर फिल्म, ये पूरी एल्बम ही क्या एल्बम थी भाई, एक एक गाना इसका नगीना। और ये वाला जो हम सुनने वाले हैं ना, ये तो उफ तौबा, ये कोई ऐसा प्यार में पड़ा इंसान नहीं होगा जिसको ये गाना पसंद नहीं होगा। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची।

पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ

0: दो जीनियस लोग जब साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई ऐसी सिचुएशन में कई बार काम करना मुश्किल हो जाता है। एक पुराने इंटरव्यू में आरडी बर्मन ने शेयर किया था कि किन के साथ काम करते करते अक्सर वो काफी अटक जाते थे।
1: एक आदमी के साथ तो बहुत अटकता है, उसका नाम है गुलजार। हम एक पिक्चर कर रहे थे आंधी, आंधी में जो उन्होंने गाने लिख के लाए वो कुछ लैंग्वेज या तो मुझे समझ में नहीं आया ना उसका मीटर समझ में आया। तो मैं बोला देखो भाई ये तो हम काम नहीं कर सकते इस तरीके से। फिर वो बोलने लगे यार तू थोड़ा ट्राई कर यार, कुछ होगा, ये करेंगे वो करेंगे। फिर करते करते हम एक दिन बैठ के मुझे थोड़ा समझ में आया कि अच्छा ऐसा उसका मीटर अलग होता है, एकदम मिलता ही नहीं। तो करते करते हट से मैं गा दिया गाना, ट्यून किया। फिर जब ट्यून किया मुखड़ा जब बन गया, मैं बोलेगा मुखड़ा तो बन गया, अभी अंतर तुमको ट्यून में लिखना पड़ेगा। अब वो फंसता है, अब वो घर चले जाता है, सोचना शुरू करता है कि अब तो मुझे ट्यून में लिखना पड़ेगा। फिर फोन करते क्या है यार जो लिखा था, नहीं तुम्हारा ये समझ में नहीं आता है, अभी तुमको मीटर में करेक्ट मीटर में लिखने पड़ेगा। फिर वो ध्यान से वो करते रहते करते करते कुछ ना कुछ हो जाता है।
0: कुछ ना कुछ भाई बहुत बड़ा कुछ बना के दिया इन दोनों जीनियस बंदों ने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इनके कॉम्बिनेशन का ये आइकॉनिक सॉन्ग सुन लेते हैं आंधी फिल्म से। दो और जीनियस लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: बाकी के म्यूजिशियंस म्यूजिक बनाने के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते थे और पंचम ऑब्जेक्ट्स का। मिर्ची सुन रहे हैं आप आरडी बर्मन स्पेशल ऑन पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। ऑब्जेक्ट्स लाइक दो ग्लास खड़का दिए, टेबल उठा के बजा दिए, सैंड पेपर से आवाज निकाल ली। इनकी वैरायटी और रेंज इतनी वास्ट थी, इसका कोई और छोर ही नहीं था। मतलब एक तरफ ये बंदा कैबरे सॉन्ग्स बना रहा है, दूसरी तरफ अमर प्रेम जैसी एल्बम। सुनिए इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में एक बार आरडी बर्मन ने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: अमर प्रेम का तो बहुत, वो भी और एक पिक्चर थी जिसमें हमने बहुत एंजॉय किया, सब लोगों ने मिलजुल के काम किया, उसमें पिताजी ने भी काम किया। वो क्या था, एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो पिताजी एक गाना गाया करते थे, बहुत पुराने गाना, उनका ही लिखा हुआ बंगाली बोल, मैं सुनाता हूँ। बैला बोए जा, अभी बोल बंगाली में, बैला बोए जा मतलब वक्त गुजरता जाए। बैला बोए जा,
0: रैना बीती जाए, क्या ही खूबसूरत गाना है। सारे गाने इस फिल्म के इतने सुंदर हैं यार। और अभी हम इस फिल्म का वो गाना सुनेंगे जिसको सुन के अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत टेंशन ले रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो इसको सुन के हम सोचते हैं छोड़ो ये ना सोचो। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: हाँ जी
4: विवेक जी।
3: हाँ जी बताइए।
4: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी आप माइंड ना करें तो 2 मिनट आपके ले लूँ मैं?
3: ऑफ कोर्स।
4: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लासेज, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
3: हाँ ठीक ही कह रहे हो।
4: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
3: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
4: अच्छा
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है हम जो मर्जी करें।
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखता
4: हूँ, थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
3: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे।
4: क्या हुआ क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
3: अरे कुछ नहीं यार।
4: नहीं फिर भी क्या मतलब, काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ क्या था?
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की।
4: अच्छा अच्छा।
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
4: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
3: हाँ अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
4: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
3: मजे आ रहे
4: हैं, बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
3: अरे
5: रेडियो मिर्ची से नवेल बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था आपके।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली

0: हार्ट ब्रेक के गाने को भी डांस वाला गाना बना दे वो मैजिशियन है आरडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वाला गाना इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जिनको सुन के मैं आरडी बर्मन की सिंगिंग कंपोजिंग सबकी फैन हो गई थी। वैसे एज अ सिंगर वो अपने आप को कोई ऑसम नहीं मानते थे। सुनिए एक बार अपनी सिंगिंग के बारे में और अमिताभ बच्चन जी के लिए गाने के बारे में उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: आई एम नॉट ए प्रोफेशनल सिंगर लाइक सच। मेरे बचपन में एक टॉन्सिल ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद मेरा गले का मतलब हल्का पतला सा वॉइस हो गया था। कि जब भी मैं गाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अलग टाइप का वॉइस में गाऊं। एक सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे वॉइस सुन के अमिताभ साहब बहुत खुश हो गए थे। अमिताभ साहब ने कहा कि भैया पंचम ये मेरे लिए तो तुमको गाना ही पड़ेगा। मैं बोला कि यार फिर से फंसने वाली बात है, एक तो तुम्हारे लिए गाना गाऊं और ऐसा वैसा करके गाना। मैंने नहीं, तुम्हारा नॉर्मल वॉइस में गाना गाओ। तो मैंने एक दो पिक्चर की है उनके साथ, वो दो पिक्चर चली नहीं। एक पिक्चर का नाम है महान और एक पिक्चर किया था पुकार। उस दोनों पिक्चर में मैंने प्लेबैक दिया था उनके लिए, लोगों ने बहुत तारीफ की।
0: है ही तारीफ के काबिल भाई इस गाने का। ना एक अलग ही रंग रूप है, एक अलग ही वाइब और फील है इसकी जिसको कोई मैच नहीं कर सकता है। पुरानी जीन्स पर आरडी बर्मन स्पेशल, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
2: Hey,

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: पुरानी जींस पर आर डी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: ये तो आपको पता है ना कि आरडी बर्मन अपनी टीनेज से ही अपने फादर एसडी बर्मन साहब को म्यूजिक कॉम्पोजिशन में असिस्ट करते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड बकायदा कुछ फिल्मों में इनको क्रेडिट भी दिया गया है, चलती का नाम गाड़ी, कागज के फूल, तेरे घर के सामने, बंदनी, गाइड, तीन देवियाँ। अच्छा, एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए इन्होंने अपने फादर के बारे में क्या किस्सा शेयर किया था।
1: पिताजी हर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे और मॉर्निंग वॉक करने के बाद वापस आके हमारा एक छोटा सा बंगला था, वहाँ पे आके बैठते थे और चाय पीते थे और मुझे डांटते थे, यार क्या यार मोटा हो रहा है, चलते नहीं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं, ये नहीं। मतलब एक दिन वो आए, वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि पंचा आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं सोचने लगा कि मुझे आज तक उन्होंने कभी भी तारीफ नहीं की, तारीफ कर रहे हैं कुछ क्या। हमें नहीं, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तुम अच्छा कर रहे हो। हर रोज मैं सुबह जाता हूँ, वहाँ पे कुछ लोग भी टहलते रहते हैं, कुछ बच्चे भी टहलते रहते हैं, कुछ लड़कियाँ टहलती रहती है, कुछ लोग मुझे कहते रहते हैं कि देखो एसडी बर्मन जा रहा है, तो मैं मन में सोचता था मेरा फैन है। आज कमाल हो गया, हमने क्या, हमने आज बोलने लगा ये देखो आरडी बर्मन का बाप जा रहा है। वो मोमेंट मेरी लाइफ का एक कमाल का मोमेंट।
0: भाई मम्मियाँ तो अक्सर बच्चों की तारीफों में पुल बांध देती हैं, लेकिन पापा से तारीफ मिलना वाकई लाइफ का प्रेशियस मोमेंट है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आरडी बर्मन स्पेशल में ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: आपको पता है आरडी बर्मन का पहले बचपन का निक नेम टुबलू रखा गया था, टुबलू। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर उनका नाम पंचम कैसे पड़ा, इस कहानी के ऐसे बहुत सारे वर्जन हैं। एक वर्जन कहता है कि अशोक कुमार दादा मुनि जी ने नोटिस किया कि आरडी जब छोटे से बेबी थे तो ऐसे प प प प की साउंड बहुत निकालते थे, तो इनका नाम पंचम पड़ गया। वैसे एक बात तो है कि आरडी जब तक जिंदा थे ना, मन से बच्चे ही थे। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में इस बारे में गुलजार साहब ने कितनी खूबसूरती से बात की थी।
1: बच्चों की तरह महसूस कर लेना एक बहुत कमाल की खूबी है, और इन्होंने बच्चों के गाने जो दिए हैं, जैसे फिल्म थी मासूम जिसमें लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, इस तरह के गाने वो जब तक बच्चे की तरह आदमी महसूस ना कर सके, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से गाना कंपोज कर सकता है। परिचय में सारे के सारे गांवों को लेकर गाते चले, किताब का गाना आ आ ई ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, जब तक आदमी वो लड़कपन या वो स्कूल बॉयश मिजाज या टेम्परमेंट वो ना हो आदमी में, तब तक ये इस तरह के गाने कंपोज करना बड़ा मुश्किल काम है।
0: मुश्किल से कामों को बड़ा आसान सा बना लेते थे पंचम अपनी मासूमियत से। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश।

0: हेलो
1: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
0: नहीं, कौन बात कर रहा है
1: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
0: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
1: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
0: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
1: ओ मेरी बात
0: कौन
1: सुन,
0: बात कौन कर रहा है?
1: ओ महेश।
0: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
1: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
0: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
1: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
0: अरे तो
1: जब डर गया था,
0: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
1: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
0: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
1: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
0: फिर वही बात को लेकर आ गया?
1: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
0: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
1: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
0: वाली बातें कर रहा है क्या?
1: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहे। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
0: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
1: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
0: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
1: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
0: भाई तू है कौन?
1: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
0: हाँ रॉन्ग नंबर है।
1: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
0: रॉन्ग ले रहा हूँ
1: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
0: अरे रॉन्ग नंबर, अरे जा,
1: बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
0: यार, चल जा, चल काम कर, चल हट।
2: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

गावन, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. Na pierdva la burga.
1: Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा है.
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पावड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे. तब क्या क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का. अभी आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
2: पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से. और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा, तो दुबई जाना है
2: भाई. जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया? वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ाते था.
2: आपने सही कह रहे
3: हैं. हाँ, तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है, मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है आपसे.
3: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे.
2: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा. हैव अ सेफ फ्लाइट.
2: ओके ओके.
3: आई लव यू.
2: आई लव यू टू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: सेवा है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: लाइफ में जब सेटबैक्स आते हैं तो उनसे कैसे डील किया जाए, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: I was reading जो अपना अंडर 19 इंडियन टीम का कैप्टन था यश धुल,
4: हाँ 2022 में उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप हमें जिताया था
3: जी। अब आप देखिए एज उन्होंने अपना कितना एफर्ट किया होगा, कितनी मेहनत की होगी और एक मुकाम तक भी पहुंच गए, सफल भी हो गए, एंड सडनली ही स्टार्टेड फीलिंग लॉट ऑफ फटीग, वेरी टायर्ड, कुडंट परफॉर्म टू हिज कैपेसिटी, उनको लगा फिटनेस की प्रॉब्लम है, और फिर पता चला कि हार्ट के अंदर होल था। अब जब होल था तो फिर एक डिसीजन लेना जरूरी था कि सर्जरी कराएं, सर्जरी के बाद लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट, फिर कमबैक करना किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए और क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। नॉर्मल व्यक्ति ले लेगा 6 महीने का गैप, पर एक क्रिकेटर के लिए
4: आपका करियर खत्म हो सकता है,
3: आपका करियर, बिकॉज यू आर जस्ट स्टेपिंग इनटू, अभी आप सीनियर में जाएंगे, आप शायद अपने कंट्री के लिए खेलेंगे। बट ही वॉज वेरी पॉजिटिव, उसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने डिसाइड किया कि क्रिकेटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी फिटनेस है। अगर फिटनेस ही नहीं है और हेल्थ ही नहीं है तो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसके बाद भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पर उस मोमेंट पर, उस जर्नी में वो सेटबैक था ना, फिर रुकना, सर्जरी कराना, फिर उन्होंने कहा बहुत जल्दी थी एज अ क्रिकेटर, आपको हो गया 1 महीना, हो गया 6 वीक, हो गया, अब जल्दी होती है कि मैं वापस आऊं। पर जैसे उन्होंने जल्दी करी तो जो बॉडी के फैक्टर्स थे, बीपी थे, वो हिलने लगे, एंड देन अगेन ही हैड टू टॉक टू हिमसेल्फ कि ये जल्दी नहीं हो सकता है, उतना टाइम लगेगा, बॉडी की हीलिंग में लगेगा, फिजिकल प्रिपरेशन में लगेगा, टू गेट बैक लगेगा। लेकिन उन्होंने अभी भी वो चीज नहीं छोड़ी कि मुझे कंट्री के लिए खेलना है।
4: सही बात।
3: उमंग है, उत्साह है, करेज है, सब कुछ है। तो

0: सकता है कि वो जल्दी ही खेलेंगे, ये तो हम सबकी दुआएं हैं, पर जरूरी ये है कि जिस दिन सफल हो जाएंगे ये सारी स्टोरीज बाहर आने लगेंगी। पर यात्रा में सेटबैक तो है, हार्डशिप तो है, उस मोमेंट में कोलैप्स नहीं होना, उस मोमेंट में उसको पॉजिटिवली लेना, उसको भी पार करना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इस जर्नी में आज आपके सामने क्या सीन है, ओनली दिस मोमेंट इज रियल, प्ले योर पार्ट वेल।
1: सुपर, वेरी नाइस,
0: मतलब आपने अपना रोल अच्छे से प्ले कर दिया, दैट्स ऑल दैट यू कैन डू।
1: क्या बात,
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आइए एक कहानी के जरिए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: 2026 का वर्ल्ड कप हमने T20 वाला जीता, तो संजू सैमसन के बारे में बहुत बात हो रही है, और जो एक कमाल की बात है कि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्टेड ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द इंडियन टीम, क्योंकि वो न्यूजीलैंड की सीरीज में बहुत खराब खेले और बहुत लोग उन पे प्रश्न उठाने लगे कि इनमें वो बात ही नहीं है, T20 के लिए लायक ही नहीं है एक्सेट्रा। और फिर वर्ल्ड कप में उन्होंने कमाल का कमबैक किया। इनफैक्ट मुझे याद है गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनका करियर वॉज ऑन द लाइन एंड ही टुक दैट मोमेंट। तो कहीं ना कहीं सेटबैक से ओवरकम करने वाली स्टोरी आई है कि भैया आप ड्रॉप्ड थे, फिर आप वर्ल्ड कप में आके कमाल करते हैं, द बिगेस्ट स्टेज ऑफ द वर्ल्ड। आई डोंट नो टू से, ये बहुत इसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए।
4: एब्सोल्युटली, इसलिए कई बार कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और इस केस में तो क्योंकि वर्ड्स आर नॉट ओनली फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, इट्स फ्रॉम एवरीबॉडी। माने जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ लगती है, क्योंकि सारी दुनिया अगर आपको अप्रिशिएट करती है, सो व्हेन यू आर नॉट डूइंग वेल, अ वेरी बिग परसेंटेज ऑफ पीपल आर आल्सो क्रिटिसाइजिंग यू।
3: एब्सोल्युटली,
4: माने जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आती है, जितनी दुआएं आपकी तरफ आती
3: है, कम होती है।
4: नहीं, जैसे अभी आपने अच्छा परफॉर्म किया
3: तब बहुत सारी आती है,
4: तो आती भी बहुत है। लेकिन जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं,
3: तब नेगेटिव तो दुनिया भर भर के आती,
4: वो भी आती है,
3: ज्यादा ही आती है,
4: ज्यादा आती है। तो माने दोनों को डील करने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: फिजिकल प्रेपरेशन के साथ मेंटल प्रेपरेशन भी उतनी ही जरूरी होती है, आइए समझते हैं क्यों।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत में समान समान माना उस चीज से आप डिस्टर्ब नहीं हो, वो आपको अफेक्ट नहीं करे। अगर वो आपको अफेक्ट करेगी तो आपके परफॉर्मेंस नीचे जाएंगे। अगर आप उससे अफेक्टेड नहीं होंगे, अपने को एम्पावर करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, अपने पर फेथ रखेंगे, अपने को और स्ट्रांग बनाएंगे, देन थिंग्स कैन चेंज फॉर यू। एंड दैट इज व्हाई वी सॉ दैट लिटिल इमेज वेयर यू नो आफ्टर ही फिनिश्ड ही बाउड डाउन।
4: हाँ, और बहुत कमाल में सेमीफाइनल में ईडन गार्डन, जब शायद हम फाइनल में नहीं आ पाते, मैच जब खत्म हुआ, ही वेंट डाउन एंड ही लुक्ड अप एंड ही क्रॉस्ड।
3: That is humility, ना?
4: बहुत बढ़िया।
3: वो humility बहुत जरूरी है उस समय पर, कि even though उनका hard work है, लेकिन अंदर व्यक्ति को पता होता है कि उससे बाहर निकालने के लिए जो strength चाहिए थी, जो inner power चाहिए थी, वो ऊपर वाले से आती है। पर उस समय पर उस चीज को याद रखना, उसका gratitude feel करना, openly उस चीज को thank करना, ये जरूरी है। देखो, फिजिकल प्रेपरेशन एक चीज है, मेंटल प्रेपरेशन दूसरी चीज है। फिजिकल प्रेपरेशन हार्डवर्क से आ सकती है, लेकिन जो मेंटल प्रेपरेशन है, मेंटल स्ट्रेंथ, वो जितना ऊपर वाले से जुड़ते हैं, जितना उसको याद करते हैं, इससे स्पोर्ट्स की फील्ड में विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, राइट थिंकिंग का बहुत ज्यादा उस चीज का वैल्यू किया जाता है। क्योंकि अगर वो नहीं है एस्पेक्ट, मेंटली आप टफ नहीं है, तो आप अपनी बेस्ट ऑफ कैपेसिटी से परफॉर्म नहीं कर पाते।
4: बिल्कुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कभी गिव अप ना करना और अपना काम करते रहना ही जिंदगी की असली जीत है। आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, T20 वर्ल्ड कप के बाद संजू सैमसन की कहानी देख के मुझे ऐसा लगता है कि पर्सिस्टेंस जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि सक्सेस आपको डिलेड मिले, थोड़ी बाद में मिले, लेकिन अगर आप लगे रहे ना तो मिलेगी जरूर। और मुझे बहुत कमाल का एक वाक्य याद आ जाता है, डेरेक रेडमंड बोल के एक एथलीट होते थे, 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में किसने 400 मीटर की रेस जीती वो किसी को याद नहीं, और ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि गोल्ड मेडली सबको याद रहता है। डेरेक रेडमंड उस रेस में लास्ट आए थे, क्योंकि वो जब दौड़ने लगे उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था, उन्होंने रेस नहीं छोड़ी, वैसे भी उन्होंने पूरी रेस कम्प्लीट करी। और एक बहुत कमाल की लाइन मेरे दिमाग में आती कि व्हेन यू डू नॉट गिव अप यू कैन नॉट लूज, तो उन्होंने साबित कर दिया कि जो रेस कंप्लीट करता है ना जीतता दरअसल वही है। और संजू सैमसन ने भी ये बात पूरी कर दी कि परसिवियरेंस अगर लगे रहे ना तो सक्सेस आएगी, डोंट वरी।
4: सी अगेन, सक्सेस हर एक के लिए अलग अलग होती है ना। एक सक्सेस होती है आउटर लेवल पर, अब जैसे आप डेरेक रेडमंड की बात कर रहे थे, तो आउटर लेवल पर अगर देखेंगे तो उनको विनर नहीं कहा, पर फिर भी लोगों ने कहा ही इज अ विनर,
3: चैंपियन जिंदगी भर।
4: क्यों विनर है? क्योंकि गिव अप नहीं किया। हम कई बार ये नहीं समझते कि गिव अप न करना भी अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है
3: जी।
4: तो वो गिव अप न करना, रेस को कंप्लीट करना, ऐसे ही ये एक 400 मीटर की रेस थी। लाइफ में भी तो चैलेंजेस आते हैं,
3: गिव अप नहीं करना,
4: वहाँ पर भी गिव अप नहीं करना, परसिवियरेंस रखना।
3: Absolutely.
4: देखो, सफलता ऐसे है पेड़ पर जो फल है, फल लास्ट चीज होती है। शुरुआत कहाँ से होती है?
3: बीज से।
4: बीज वो तो दिखाई नहीं देता, हार्डवर्क तो कभी दिखाई नहीं देता, प्रेपरेशन तो दिखाई नहीं देता। बीज के बाद भी आप कितने समय तक पानी डालते रहते हैं, और आपको कई बार थोड़ा सा डाउट भी होता है कि अंदर कुछ हो भी रहा है कि नहीं।
3: हाँ, सही बात।
4: क्योंकि सो मेनी थिंग्स आर सो हिडन, जो मेन एफर्ट होता है ना वो बहुत हिडन होता है, बहुत गुप्त होता है। वो गुप्त चीज एकदम दुनिया के सामने आती है, आप पानी डालते हैं फेथ से, आप सन की लाइट भी है, पानी भी है, पानी वो दृढ़ता का पानी होता है, डेली आप फेथ रख करके उसमें करे जा रहे हैं, फिर धीरे से दो पत्ते निकलते हैं, और जब वो दो पत्ते भी निकलते हैं ना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल टाइम। कच्चे पत्ते होते हैं, उसको कोई भी जानवर खा सकता है, यू हैव टू रियली प्रोटेक्ट।
3: सही बात।
4: लेकिन जब एक दिन वो पेड़ बन जाता है, आपको क्या करना पड़ता है? इतना फल निकल कर आता है कि आप खा नहीं सकते, बट फल इज द रिजल्ट, सफलता। हम फल देखते हैं, पर जरूरी है कि उस फल तक पहुंचने के लिए जो एक जर्नी है, प्रेपरेशन है, मेहनत है, हिडन लेवल पर जो हार्डवर्क है, अगर वो आप करते हैं तो फल तो आना ही है, फल तो बाय प्रोडक्ट है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Silence कमजोरी नहीं, बल्कि एक बड़ी ताकत है. आइए इस ताकत को समझते हैं और लाइफ में कैसे अप्लाई करें ये जानते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: T20 वर्ल्ड कप विन के बाद ना बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कमबैक किया, बहुत बार ड्रॉप हुए वर्ल्ड कप के दौरान ड्रॉप हुए, लेकिन फाइनली अच्छा खेला. अक्षर पटेल उनमें से एक नाम है, संजू सैमसन एक नाम है, ईशान किशन फाइनली प्लेड वेरी वेल, अभिषेक शर्मा ने भी लास्ट मैच में खेल के साबित कर दिया कि हाँ, जो फेथ मुझ में कैप्टन और कोच रख रहे थे उन्होंने उसको पूरा किया. मुझे लगता है कभी कभी कमबैक जो होता है ना उसपे स्पॉटलाइट नहीं होती है, वो बहुत एक साइलेंट जर्नी होती है. तो कमबैक जो है ना वो खामोशी में ही होती है. जब आप ड्रॉप हो जाते हैं बहुत लोग बात करते हैं, उसके बाद कोई आपको याद नहीं रखता. तो जब आप कमबैक करते हैं वो साइलेंस में होती है. उस साइलेंस में आप क्या करते हैं वो बहुत जरूरी है. जब आप पे स्पॉटलाइट बिल्कुल नहीं है तो कभी कभी भगवान हमें शायद आप ये सिखा रहा होता है कि तुम्हारा जो ड्रॉप होना है वो रिजेक्शन नहीं है, ये मौका तुम्हें हम दे रहे हैं कि तुम अब हार्डवर्क करो और वापस आओ, ताकि दुनिया के लिए नहीं तुम अपने आप को बता सको कि तुम में अभी भी क्षमता है.
4: दिस इज द वे यू टेक इट. सी दैट इज व्हाट ना, आप उसको पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं. लाइक यू सेड, ये कॉन्वर्सेशन अपने से करनी होती है. एक और चांस है, एक और अपॉर्चुनिटी है. आई नो आई हैव दैट टैलेंट, बस मेहनत करने की जरूरत है. आई विल प्रूव माई सेल्फ. अब आप उसको इस तरह से भी देख सकते हैं. दूसरा, डिसहार्टन भी हो सकता है
3: जी.
4: आपको सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे क्रिकेट के फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में, जिनों को सेटबैक था फिर वो कभी दिखाई नहीं दिए क्योंकि उन्होंने वो एफर्ट ही नहीं किया. वो नेगेटिव हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, चले गए. और आपको ऐसे भी मिल जाएंगे क्योंकि मेंटली स्ट्रांग थे तो कम बैक कर लिया. दोनों मिलेंगे
3: जी.
4: पर दोनों के सामने सेम सिचुएशन होते हुए दोनों की जो मेंटल प्रिपरेशन थी वो अलग थी. देखने का तरीका, परसीव करने का तरीका, सोचने का तरीका, विजुअलाइज करने का तरीका, एंड दैट यू नो व्हाट यू थिंक शेप्स योर फ्यूचर. है तो कितनी छोटी सी लाइन, बट योर थॉट्स शेप योर फ्यूचर एंड योर वर्ड्स शेप योर रिलेशनशिप्स.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

0: Orange Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, लिखते हैं कि नमस्ते सिस्टर श्रेया, मैंने हाल ही में आपको सुनना शुरू किया है और आपकी बातें मुझे सच में बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं। मैं अपने पास्ट को लेकर स्ट्रगल कर रही हूँ। जिस इंसान पर मैंने 4 साल ट्रस्ट किया, उसने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के रिलेशनशिप खत्म करके मुझे घोस्ट कर दिया। 4 महीने हो गए हैं, मैंने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश भी की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे पता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, फिर भी एक सवाल बार बार मुझे डिस्टर्ब करता है कि कोई बिना कुछ कहे सब कुछ कैसे छोड़ सकता है। जब सामने से क्लोजर ना मिले तो खुद को कैसे हील करें और कैसे मूव ऑन करें?
3: उसको एक खूबसूरत मोड़ समझ करके भूल जाए। See, the time that you have spent with that person was very good. Closure बाहर से नहीं मिलता, closure खुद को देना पड़ता है। ठीक है, आपके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, आप चाहेंगे ये चीज का आंसर आपको मिले कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। लेकिन हम चाह रहे हैं पर वो नहीं बात करना चाह रहे या वो नहीं इस चीज को आंसर कर रहे हैं, तो कितना उसके अंदर और इन्वेस्ट करेंगे, कितना और अंदर ही अंदर अपने साथ नेगेटिव कॉन्वर्सेशन करेंगे। फिर कभी कभी हमारा अपने से फेथ भी खत्म होना शुरू हो जाता है
2: कि मुझे में कुछ कमी होगी।
3: हाँ, मुझ में कोई कमी होगी, मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी। देन वी कीप इमेजिनिंग थिंग्स, वी कीप अज्यूमिंग थिंग्स, वी कीप, और वो हमें वीक करता है ना। हमने कोई रिलेशनशिप में अपना 100% दिया, इंजॉय किया, बहुत कुछ उससे सीखा, ट्राई भी किया उसको वर्कआउट करने के लिए। आई विल नेवर से कि छोड़ दें। अगर किसी भी रिश्ते के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए वो जब तक बन सके, क्योंकि रिश्ता क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। दो जने होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट अगर होते हैं तो संस्कारों की थोड़ी रास करनी पड़ती है। कभी किसी को झुकना पड़ता है, कभी किसी को थोड़ा सहन करना पड़ता है, कभी किसी को लेट गो करना पड़ता है, तो ही वो रिश्ता आगे बढ़ता है। हर समय आप समझे मैं ही राइट हूँ तो भी वो रिश्ता नहीं बनता है। तो रिश्ते के अंदर एक एफर्ट होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने सब कुछ कर लिया और वो व्यक्ति क्लियरली कहता है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, देन आई डोंट थिंक इट इज फेयर ऑन यू। क्या वो चीज को सोच सोच सोच सोच करके दुख में जाएं, उसका जख्म क्रिएट करें, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएं? इट इज हार्मिंग यू, आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपका वर्क, आपका एनवायरमेंट। इसलिए लेट गो, क्लोजर अपने को दे। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, शायद अब शायद इससे भी कोई और अच्छा मिलेगा। मे बी आई डिजर्व समबडी बेटर। वैसे भी अगर कोई ऐसे आपको बिल्कुल छोड़ करके चला गया,
2: उसके भरोसे
3: आप रियलाइज भी कर रहे हैं कि आप उसके साथ जीवन भर तो बिता नहीं सकते हैं, सो देन गिव दैट क्लोजर टू योर सेल्फ। अच्छा ही हो गया, किसी परमानेंट रिलेशनशिप में जाते, मैरिज आदि होती, इससे पहले मुझे इस व्यक्ति के बारे में पता चल गया। ग्रेटिट्यूड फील करें। किसी व्यक्ति की अगर कोई नेगेटिविटी पहले सामने आ जाती है और आप बच जाते हैं, तो ये भी जैसे आपका कोई अच्छा पुण्य कर्म है।
2: आई थिंक उन्होंने क्लोजर ले लिया जब उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। क्लोजर आपको मिल
3: नहीं, क्लोजर तब तक नहीं मिलता है जब तक हम उस दर्द से बाहर नहीं आते
2: या सामने वाला मुझे जवाब नहीं दे,
3: जो भी कारण है। लेकिन दर्द तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना अभी, वो जो भी जवाब देंगे, लेकिन दर्द तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने उसको पकड़ा हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं होल्ड ऑन कर रहा हूँ, आई एम नॉट लेटिंग गो। क्लोजर उस दिन होगा व्हेन आई से आई लेट गो, दे वर ब्यूटीफुल 4 इयर्स
2: एंड आई मूव ऑन।
3: बहुत सुंदर थे, फिर ये सीन हुई, बहुत अच्छी नहीं थी, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। शायद इससे अच्छा कोई सीन लाइफ में आना बाकी है, इससे अच्छा व्यक्ति आना बाकी है, और अब वो चीज अंदर पेन क्रिएट नहीं कर रही है, वो अंदर दुख नहीं दे रही है। यू आर कम्फर्टेबल, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज क्लोजर। आप दर्द में है तब तक वो क्लोजर नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है

आई, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर। आदेश मान कर चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। ओम शांति, मेरा नाम साक्षी है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो जो गलतियां उसने जीवन में की हैं उनका पछतावा क्यों होता है, और कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि आत्मा अभी कुछ और दिनों तक शरीर के साथ रहनी चाहिए थी?
3: सी, जो हम स्पिरिचुअली समझते हैं, पश्चाताप तो कोई शरीर छोड़ने के बाद ही नहीं होता। पश्चाताप माना, हम लाइफ में भी तो कितना पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप क्या होता है कि आपने कुछ किया और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
2: लेकिन जीवन के आखिरी दिनों में शायद जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है तो उस समय शायद बहुत लोग बोलते हैं कि काश मैंने ये नहीं किया होता, शायद उनका उस तरफ,
3: क्योंकि साथ में क्या जाता है?
2: कुछ नहीं।
3: मे बी उस समय नहीं, कुछ नहीं क्या, साथ में यही जाता है ना, कर्मों का हिसाब किताब। आपको क्यों पश्चाताप हो रहा होता है? क्योंकि आपने बहुत सारी उन चीजों को इम्पोर्टेंस दी होती है जो चीजें साथ में जाने वाली नहीं होती, और उसके लिए आपने अपने वैल्यूज के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया होता है। सी, कर्म इज नॉट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ऐसा नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट है। आप समझे ना, एक लॉ है, जैसे ग्रेविटी का लॉ होता है, आपने कुछ ऊपर फेंका तो वो नीचे आता है। तो कर्म का भी लॉ क्या कहता है? कॉज एंड इफेक्ट। जो आपने किया है उसका एक इफेक्ट है। अब हमने करते समय तो कई बार हम जस्टिफाई कर देते हैं, ये करना जरूरी था, झूठ बोलना जरूरी था, गुस्सा करना जरूरी था, उस समय पर कर दिया। अब जब उसका इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट मेंटल सफरिंग भी तो एक इफेक्ट होता है ना। आप पश्चाताप कर रहे हैं, गिल्ट कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं सब कुछ जीवन में ठीक है, पता नहीं फिर भी क्यों इतनी उदासी है, खुशी क्यों नहीं अनुभव होती है। मेंटल सफरिंग बहुत बड़ा एक कार्मिक रिटर्न है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको अच्छा ही नहीं लगता, आपको जीवन जीने की दिल ही नहीं होती, तो फिर उस समय कई बार पश्चाताप होता है। लेकिन पश्चाताप की जगह रियलाइजेशन ज्यादा अच्छी है। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपने रियलाइज किया कि ये ठीक नहीं था, आगे नहीं करें, बस और क्या।
2: इसमें आप आगे नहीं करें बोलना चाहती है? क्योंकि शी इज टॉकिंग अबाउट समबडी हू, और शी इज टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ।
3: या अगर आप,
2: शी इज अबाउट टू पास ऑन।
3: अगर बिफोर आल्सो, सी व्हाट इज सोल गोइंग टू टेक, अगर आपने उस चीज को रियलाइज भी किया ना, तो वो स्मृति भी आपके साथ जाती है।
2: अरे वाह, क्या बात। जब आपने रियलाइज किया तभी
3: सोल अपने साथ संस्कार और हिसाब किताब लेकर जाएगी। तो अगर आपने उस चीज को रियलाइज भी किया तो आपके संस्कार में वो चीज चली जाती है कि ये गलत है। तो इवन अगर आपका कॉस्ट्यूम चेंज होगा तो वो स्मृति आपको एक बार जरूर हिट करेगी कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देन अगेन इट इज अ डिसीजन कि करना है कि नहीं करना, फिर उससे एक नया कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होगा, लेकिन आपके पास एक चॉइस जरूर होगी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर ब्रजेश वडोदरा से लिखते हैं कि नमस्ते, मैं रेडियो मिर्ची और श्रेया दीदी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। आप दोनों को ढेर सारा प्यार। हम अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की ओर कैसे प्रोत्साहित करें? जब हम सतयुग की बात करते हैं तो बच्चे तर्क देते हैं कि मशीन या मेहनत के बिना कुछ भी बनाना संभव नहीं है, तो केवल विचारों से सृष्टि कैसे हो सकती है?
3: देखो, जब हम बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो बच्चों के लेवल पर आकर के करनी चाहिए। पहली बात तो बच्चों के लेवल पर आने का मतलब ये है कि आप अगर चाहेंगे कि वो डेली स्पिरिचुअल क्लास अटेंड करें, हो सकता है शायद वो उतने इंक्लाइंड नहीं हो
2: जी।
3: कुछ दिन पहले मैं एक पेरेंट के साथ मिली थी, तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों के साथ लेकिन 10 मिनट जरूर बैठते हैं।
2: हाँ।
3: कुछ अच्छी बातों के ऊपर डिस्कशन जरूर करते हैं।
2: हाँ।
3: और एक हमारा कॉमन प्रैक्टिस है घर के अंदर कि अब बच्चों को हैप्पी मोमेंट जरूर लिखना है।
2: अरे वाह, क्या
3: वो दोनों स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, हस्बैंड वाइफ, और वो बच्चों को रोज, तो बच्चों को भी आदत पड़ गई कि कितने भी थके हुए होंगे, उनके वाइफ सुना रही थी कि वो बच्चे कितने भी थके हुए होंगे
2: लेकिन वो लिखेंगे जरूर,
3: उनको पता है कि पापा ने पूछना ही है। और वो सिंगर है, खरीश मोयल सिंगर है, उनके डॉटर नित्या मोयल एक्टर है, बिजी है, वो लोग परफॉर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनके घर का नियम है, ये उनकी पेरेंटिंग है, ये रात को आपको अपना हैप्पी मोमेंट आकर लिखना ही है। तो कहते बच्चों के अंदर भी अभी ये कॉन्शियसनेस है सारे दिन के अंदर कि जा करके कोई हैप्पी मोमेंट लिखना है, तो मोमेंट दिन में होना भी तो चाहिए ना। तो वो दिन भर में अवेयर होते हैं कि मुझे सब कुछ हैप्पीली करना है तो मैं अपने मोमेंट्स के अंदर लिख सकूं। अब वो कल्चर है घर का, तो कल्चर है कि जब आपको लिखना है तो फिर आपको करना भी पड़ेगा। सो दे हैव स्टार्टेड लिविंग देयर लाइव्स विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस,
2: वेरी नाइस,
3: एंड नाउ दे लुक फॉरवर्ड टू इट। दे लुक फॉरवर्ड कि हम एक दूसरे को बताएं कि हमारे दिन का हैप्पी मोमेंट क्या था। तो बच्चे हैं, बच्चे के लेवल पर जाना पड़ेगा। सेकंड, आई रिमेम्बर दिस मदर शेयरिंग कि जब भी वो टिफिन पैक करते हैं तो वो एक स्लिप पेपर के ऊपर कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छी स्टोरी, कुछ एक अच्छा उसके अंदर लिख कर देते हैं। अब वो जो बच्चा है, नाउ ही लुक्स फॉरवर्ड टू इट, धीरे धीरे, जैसे वो चिकन सूप की हमारी किताबें हुआ करती थी, वो बहुत स्पिरिचुअली एम्पावरिंग होती थी। पर कोई एक स्टोरी अगर आपको पता है कि आपको रोज मिलने वाली है, अब कहते बाकी बच्चे पहले देखते थे टिफिन में क्या आया है,
2: अब वो देखते मेरे टिफिन में क्या आया है,
3: अब वो मेरे में क्या, हाँ, क्या स्टोरी है, उस चीज का सबको इंतजार होता है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कुछ ऐसी बातें जो आपको पॉजिटिव बना रही है, कुछ ऐसी बातें जो आपके अंदर पीस, हैप्पीनेस, कंपैशन, फॉरगिवनेस क्रिएट कर रही है, वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम फिलॉसफी और इन सब चीजों की बात करें, अच्छी अच्छी बातें सुनना, देखना, पढ़ना, उसकी एक आदत पढ़ना, वो स्ट्रांग होंगे। अगर हम कहीं स्पिरिचुअली डीप एस्पेक्ट नहीं समझ पाते हैं तो हमारी बुद्धि वहां तक डेवलप नहीं हुई होती है। जैसे अगर एक स्कूल के बच्चे को आप इंजीनियरिंग के क्लास में बिठा दें तो वो जो वहाँ पर सुना रहे हैं वो गलत नहीं है, बच्चे की बुद्धि उतनी डेवलप नहीं हुई होती है। कई स्पिरिचुअल जो बातें होती हैं डीप होती हैं, उसके अंदर तर्क होता है, उसके अंदर रैशनैलिटी होती है, उसके अंदर कुछ लॉजिक होता है, पर मे बी आई एम नॉट उतना बुद्धि से डेवलप कि उसको समझ सके। अब उसको आप जबरदस्ती उसमें समझाने की कोशिश करेंगे या आर्ग्यू करेंगे तो उनका मन फिर जो अच्छी बातें हैं उससे भी उठ जाता है। इसलिए गो स्लो, जहाँ ए समझना है वहाँ ए समझना है, जहाँ एप्पल समझना है वहाँ एप्पल समझना है। तो ये भी नर्सरी से लेकर इंजीनियरिंग तक एक स्लो प्रोसेस है ना।
2: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, दिस इज प्रिसिला एंड यू ऑफिशियली एंटर्ड द नो बोरिंग जोन, यानी कि मिर्ची मॉर्निंग्स। वेलकम है जी। यहाँ पर कॉफी जो है वो गर्म है, गॉसिप जो है वो गर्मा गर्म है, और एनर्जी जो है वो सुपर गर्म है। अभी वेदर यू आर ड्राइविंग टू वर्क, पैकिंग द किड्स लंचेस, या फिर प्रिटेंड कर रहे हो वर्क फ्रॉम होम करने का व्हाइल यू आर स्टिल इन योर पजामास, डोंट यू वरी, हमारा सीक्रेट जो है वो सेफ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे साथ ही रखना फॉर नेक्स्ट लिटिल व्हाइल। वी आर गोइंग टू मेक ट्रैफिक feel shorter, meetings feel survivable, and homesickness ko thoda sa holiday mode par bhej denge, and expect Bollywood ke mirchidar bangers, masti, nostalgia, good vibes, and of course wo random conversation jo sirf aur sirf desi log hi samajh sakte hain. Saath saath mein tumhe around the world ki khabrein bhi milne wali hai, news updates milne wala hai, and bahut sari aur baatein karne wale hain. Ab sab kuch yahi bata do kya, filhal fatafat se jao mujhe Instagram par aur X par follow karo, mera handle name hai mirchi pris, That is MIRCHIPRIS, और अभी मिर्चीदार बैंगर्स चलाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। मेरा नाम है प्रिसिला, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La virgola la murga. Mirci, murga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Anji.
2: Vivek ji.
1: Anji, bataiye.
2: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
1: या ऑफ कोर्स।
2: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लासे से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े, सारे मज़े लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: हाँ, ठीक ही कह रहे हो।
2: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
2: अच्छा,
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
2: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखना,
2: थोड़ा ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन।
1: हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
2: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
2: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखियों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की।
2: अच्छा अच्छा,
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
2: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: हाँ, अभी
2: इन्होंने चिल्लाई
1: तो फिर बुरा बहुत।
2: आप कह रहे हो चिल्ला के, बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
1: मजे आ रहे हैं,
2: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
1: अरे तेरे को मजा आ रहा है यार, तू मजे ले रहा फोन करके?
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my sunshine. मैं हूँ Priscilla और चलो अब करते हैं super fast time travel without any passport and visa. 1613 में लंदन का famous Globe Theatre literally went up in smoke. Shakespeare का play चल रहा था. Cannon चली और theatre ने कहा अच्छा चलता हूँ. फिर 1927 में humans proved कि long distance relationship सिर्फ लोग नहीं बल्कि airplanes भी कर सकते हैं. The first ever trans-Pacific flight successfully हवाई पहुंची. And 1964 में अमेरिका ने एक historic step लिया. The Civil Rights Act Senate से पास हुआ. Jump to 2007, दुनिया ने collectively बोला hello touch screen. The first iPhone was launched और तब से हम फोन हमें ज्यादा यूज कर रहा है. और इंडिया में आज है नेशनल Statistics Day, celebrating legendary statistician Prasanta Chandra Mahalanobis. अब हिस्ट्री की क्लास खत्म और मिर्चीदार गानों की बौछार शुरू होने वाली है. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड इन एंड कीप वाइबिंग विद मी, इट्स हॉट.

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Acha, tell me, what's worse than forgetting your wallet at home? It's forgetting someone's name. Good morning, guys. I am Priscilla, tumhare saath mein. Aur ab time hai thodi si Bollywood ki garma garam tea phailane ka. So here's the scoop. Akshay Kumar recently couldn't stop praising the blockbuster success of Sayara. But plot twist ye hai ki jab film ke lead actors ke naam lene ki bari aayi, to unka memory card jo hai wo buffering mode par chala gaya. Instead of saying Ahaan Pandey and Anith Padda, Akshay simply call them the new boy and the new girl. अरे अक्षय सर, इतना भी न्यू मत करो कि आप ओल्ड साउंड करने लग जाओ. वैसे लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी इंपॉर्टेंट मौके पर कोई ना कोई चीज भूल गए हो. कभी कभी स्कूल के फ्रेंड्स के नाम याद नहीं आते हैं, कभी ऑफिस के किसी कॉलीग का नाम 3 बार पूछना पड़ता है, और जब फिर भी याद नहीं आता तो उसे हे करके बुलाना पड़ता है. डिफरेंस बस इतना है कि हमारा मोमेंट फैमिली, व्हाट्सएप, ऑफिस, कॉलीग, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक ही रह जाता है. लेकिन अगर मैं सेलिब्रिटी होती तो ये मोमेंट मेरा भी इंटरनेट पर वायरल हो जाता, जैसे कि अक्षय कुमार का हो गया. लेसन ऑफ द डे ये है कि प्रेज करो तो दिल से करो और नाम लेकर करो. तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है बताओ मुझे. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रेस. डीएम कर सकते हो मुझे तुम डायरेक्टली MIRCHIPRIS पर, या फिर व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर. That's 9033647244. फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स चलाती हूँ तुम्हारे लिए. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और सुन रहे थे मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अब सुनते हैं मौसम का हालचाल। फिलहाल टेम्परेचर हो रहा है 66 डिग्रीज फारेनहाइट, क्लाउडी स्काइज के साथ है, लेकिन फील हो रहा है 68 डिग्रीज फारेनहाइट, यानी कि वेदर जो है वो उस दोस्त की तरह है जो कहता है यार मैं ठीक हूँ लेकिन एक्चुअली ठीक नहीं होता है। गुड न्यूज ये है कि रेन का जीरो चांस है आज। पिछले 24 घंटों में भी जीरो रेन थी और अगले 24 घंटों में भी अम्ब्रेला को पेड लीव दी जा सकती है। सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक सनशाइन जो है फुल ऑन एंट्री मारने वाली है। देखो अभी दोपहर 1 बजे तक सनशाइन जो है फुल एंट्री मारने वाली है। सो अगर मॉर्निंग वॉक पर जाना है, कॉफी रन पे जाना है या फिर क्विक ग्रोसरी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये तुम्हारा वीआईपी विंडो है। लेकिन 1 बजे के बाद क्लाउड्स जो है वो फिर से थोड़ा सा कमबैक करने वाले हैं, कैमियो है उनका, और टेम्परेचर जो है मॉर्निंग में अराउंड 63 डिग्रीज फारेनहाइट रहने वाला है। फिर आफ्टरनून आते आते इट्स गोना जंप टू 87 डिग्रीज फारेनहाइट और फिर धीरे धीरे धीरे 89 डिग्रीज फारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। मतलब आज एसी और आइस्ड कॉफी की गहरी दोस्ती तुमसे होने वाली है। और एक इम्पोर्टेंट हेड्स अप, वेंसडे के लिए एक्सट्रीम हीट वॉच इशू किया गया है। सो हाइड्रेट करते रहना, कम से कम एक दिन में 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। साथ साथ में अपना SPF 50 प्लस प्लस प्लस सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। और अगर बाहर जाना जरूरी है तो कैप और वाटर बॉटल को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर ले जाना, नो कैप। ये याद रखो, फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो एक्चुअल नंबर से थोड़ा सा अलग है, यानी कि तुम्हें थोड़ा सा वार्म ज्यादा फील होने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, लेयर के प्लेयर बनो। और फिलहाल लेट मी प्ले सम मिर्ची दैट बैंगर्स फॉर यू। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम एंड एक्स प्रोफाइल्स। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। और जल्दी से व्हाट्सएप का नंबर भी बता दू, 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244, दैट्स माई नंबर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabala, uskabala, sakabala.
2: Rabala.
1: Murga, murga. Na vidvala murga.
2: Milci, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: कौन?
4: Hello, Vipin.
3: कौन बोल रहा है?
4: इस्ता. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
4: आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
4: भाई मानक मेरे बॉस सो रहे हैं. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका

0: फायदे की बात, और तुम स्पीकर फोन पे हो जरा सा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है। आप बताओ कब किया था?
1: अभी पहले किया था।
0: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन की थी।
0: भैया इसका बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं। आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
1: जाना जरूरी है?
0: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई।
0: अच्छा तो दुबई जाना है
1: भाई, जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
0: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख निकलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
1: ठीक है।
0: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ाते था।
1: आपने सही कह रहा है।
0: हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
1: नहीं बोलना।
0: भाई साहब एक बात बताऊँ?
1: बताओ।
0: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
1: तो पागल है क्या?
0: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
1: करवा देना भी है आपसे।
0: मरवाओ के क्या, उठ जाएंगे।
1: सॉरी।
0: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा, हैव अ सेफ फ्लाइट।
1: ओके।
0: आई लव यू।
1: आई लव यू टू।
2: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब थोड़ी सी स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स ने ऐसा माइक ड्रॉप मोमेंट दिया है कि क्रिकेट फैंस जो है ना उसे अभी तक रीप्ले करके देखते जा रहे हैं। सीन इमेजिन करो कि ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में क्राउड को अनाउंस किया गया कि स्टोक्स जो है रिटायरमेंट लेने वाले हैं। पूरा स्टेडियम जो है वो खड़ा हो गया, स्टैंडिंग ओवेशन, क्लैप्स, इमोशंस एंड फुल ऑन बॉलीवुड के क्लाइमैक्स की तरह सीन हो गया। और बस उससे मेयर 27 seconds के बाद, हाँ जी सिर्फ 27 seconds के बाद, मिस्टर बेन स्टोक्स सेड इमोशनल, बाद में हो ना, पहले मुझे विकेट लेने दो। उन्होंने जैक फोक्स को आउट कर दिया, एज गया सेकेंड स्लिप और हैरी ब्रूक ने कैच पकड़ लिया। ग्राउंड का इमोशन जो है सीधा सेलिब्रेशन मोड में कन्वर्ट हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी कभी बेस्ट रिप्लाई वर्ड्स नहीं बल्कि परफॉर्मेंस होता है, यानी कि तुम्हारे वर्ड से ज्यादा तुम्हारे एक्शंस काम करके दिखाते हैं। और स्टोक्स जो है उन्होंने वो रिप्लाई सिर्फ और सिर्फ 27 seconds में दे दिया है। मतलब इन शॉर्ट मैं तो ये कहूंगी कि बेन स्टोक्स क्या सीन था यार, कसम से। अभी फिलहाल जाकर मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माय बर्थडे बेबीज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। अगर आज यानी कि 29th ऑफ जून को तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो मिर्ची फैमिली की तरफ से तुमको एक झकास हैप्पी बर्थडे। एंड गेस व्हाट, आज तुम्हारे साथ कुछ आइकॉनिक लोगों का भी हैप्पी वाला बर्थडे है। लेट्स फाइंड आउट हु दे आर। सबसे पहले यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे विद कॉमेडियन कॉलिन जॉस्ट एंड एक्ट्रेस कमिला मेंडिस। स्पोर्ट्स फैन NBA सुपरस्टार क्वाही लेनर्ड भी आज ही के दिन इस धरती पर आए थे। डांस लवर एडम सिवानी फ्रॉम द स्टेप अप मूवीज भी 29th ऑफ जून के बेबी है। और रेडियो लवर्स के लिए लेजेंडरी रेडियो पर्सनालिटी शालमन द गॉड का भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। और बर्थडे का रूल नंबर 1 होता है कैलोरीज डोंट काउंट। रूल नंबर 2 होता है अगर किसी ने पूछा कितने साल के हो गए तो कॉन्फिडेंटली बोलो ओल्ड इनफ टू नो बेटर एंड यंग इनफ टू स्टिल डांस व्हेन माय फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग Come on. And abhi Mirchi Mornings par aane wale tumhare favorite Bollywood bangers mere aane ki Priscilla ke saath bane raho aur Insta aur X par mujhe follow bhi kar lo. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Priscilla, it's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। रब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
2: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,200, $4,200 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से अपवर्ड ट्रेंड ऊपर चले गए हैं, और इससे पहले और ऊपर जाएं, आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें, जिसमें 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। आप आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी के, और 9 मंथ्स में इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं। आइए मिलके इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में विद द टीम ऑफ rajjewels.com। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
1: एंड देयर यू गो, गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट तो तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन क्या तुम्हें पता है मुझसे इंस्टाग्राम और एक्स पर तुम बातें कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट करने के लिए 9033 मिर्ची इज द नंबर, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: एनर्जी मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे यू, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ एंड दिस इज मिर्ची आवर का 3 ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले अ स्टोरी ऑफ होप फ्रॉम वेनेजुएला। रेस्क्यूअर्स पुल्ड अ फादर एंड हिज सन अलाइव फ्रॉम द रबल 96 आवर्स आफ्टर पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्रक। दे वर फाउंड इन द बैडली अफेक्टेड प्रोविंस ऑफ लागुआरा। सैडली अथॉरिटीज से द डिजास्टर हैज क्लेम्ड मेनी लाइव्स विद थाउजेंड्स स्टिल अनअकाउंटेड फॉर। And number two, per this one's heartbreaking, investigators in the US say they found the remains of 117 dogs at a shelter that described itself as a no-kill facility. The investigation is ongoing and authorities are working

0: हेलो
1: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
0: नहीं, कौन बात कर रहा है
1: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
0: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
1: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
0: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
1: ओ मेरी बात
0: कौन
1: सुन,
0: बात कौन कर रहा है?
1: ओ महेश।
0: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
1: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
0: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
1: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
0: अरे तो
1: जब डर गया था,
0: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
1: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
0: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
1: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
0: फिर वही बात को लेकर आ गया?
1: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
0: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
1: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में मैंने तुझसे
0: वाली बातें कर रहा क्या?
1: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
0: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
1: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
0: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
1: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
0: भाई तू है कौन?
1: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
0: हाँ रॉन्ग नंबर है।
1: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
0: रॉन्ग ले रहा हूँ
1: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
0: अरे रॉन्ग नंबर, अरे जा,
1: बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
0: यार, चल जा, चल काम कर, चल हट।
2: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Raise your hand अगर जानना है तुम्हें कि सितारे तुम्हारे बारे में आज क्या बोल रहे हैं। मैं वो प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज राशि जोन का पहला पार्ट।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज लास्ट मिनट हीरो मत बनो। थोड़ी सी प्लानिंग आज तुमको कल की टेंशन से बचा सकती है। लकी कलर इज कालेट, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, दिल की बात ऑनेस्टली बोलो, तुम्हारी सिंसियरिटी ही आज तुम्हारा बिगेस्ट सुपर पावर बनेगी। टीम भी बोलेगी वी आर विद यू। लकी कलर इज ग्रीन, लकी नंबर इज 22। जेमिनी यानी मिथुन राशि, पैसों को लेकर स्ट्रेस हो सकता है लेकिन सोल्यूशन भी साथ ही आ रहा है। ट्रस्ट द प्रोसेस बेबी। और अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग से थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा इतू सा। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, सबको कन्विंस करना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी पॉज का बटन भी लाइफ का बटन बन जाता है। थोड़ा सुन भी लो, सिर्फ बोलते मत रहो। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 18। लियो यानी कि सिंह राशि, अगर आज थोड़ा सा स्लो लग रहा है डोंट यू वरी, ये बस इंटरवल है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिग एनर्जी इज लोडिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लकी कलर इज येलो, लकी नंबर इज 1। वर्को यानी कन्या राशि, कॉन्फिडेंस ऑसम है, ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेस ऑसम होता है। आज स्मार्ट मूव से खेलो, सुपर हीरो मोड भी ऑन कर सकते हो लेकिन बी अ लिटिल लेस कॉन्फिडेंट। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 30। और अब बाकी बचे 6 राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में। तब तक तुम जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी चलाते मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: G-Mornings with Priscilla. It's hot.
1: आज का मिलियन डॉलर क्वेश्चन, आज का दिन कैसा जाने वाला है? मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में राशि जोन पार्ट टू लेकर आ चुकी हूँ. लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, ड्रामा मैग्नेट लोग आज तुम्हारे आसपास हो सकते हैं. रिमोट कंट्रोल नहीं है तो एटलीस्ट अपनी अटेंशन का वॉल्यूम जो है वो कम करो. लकी कलर इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 11. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, परफेक्शन अच्छी बात होती है, ऑब्सेशन बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती. आज खुद पे थोड़ा सा इजी रहो, प्रोग्रेस भी सेलिब्रेशन डिजर्व करता है. लकी कलर इज मरून, लकी नंबर इज 8. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, दिल बड़ा रखो यार, लेकिन वॉलेट पर सिक्योरिटी गार्ड को भी बिठाकर रखो. आज खर्च करने से पहले 20 बार सोच लेना. लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 27. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, इमोशंस को प्रेशर कुकर मत बनाओ जी, जो फील कर रहे हो कामली एक्सप्रेस करो. आज ऑनेस्टी इज योर बेस्ट थेरेपी. लकी कलर इज ग्रे, लकी नंबर इज 16. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज अगर सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, रिलैक्स मेरी जान, हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है और हर मिस्ट्री सॉल्व करना तुम्हारा काम नहीं है. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 33. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन, क्रिएटिविटी फुल पावर में है, बस जेलस लोगों की बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा म्यूट दबा दो. आज अपनी स्टोरी का हीरो सिर्फ तुम और सिर्फ तुम हो. लकी कलर इज आक्वा, लकी नंबर इज 9. एंड दैट्स द एंड ऑफ राशि जोन पार्ट द्वितीय. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट करना चाहते हो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फॉर कनेक्शन, फीडबैक और क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर. अभी फिलहाल मिर्ची दार बैंगर्स चलाते तुम्हारे लिए, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट. Yeah.

only on Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: और बस दोस्त, आज की मिर्ची मॉर्निंग्स की सुबह यहाँ पर रैप अप होने वाली है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। ऑफ कोर्स जाने से पहले तुम्हें एक फील गुड स्टोरी जरूर सुनाकर जाऊंगी। यूरोप में हीट वेव ने लोगों का एसी से इमोशनल अटैचमेंट और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। जर्मनी में टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है और रात को भी गर्मी लोगों को चैन से सोने नहीं देती है। मुझे इंडिया का नॉस्टैल्जिया हो रहा है। लेकिन बर्लिन पुलिस ने एक मस्त आइडिया निकाला है। जो वाटर स्प्रेइंग ट्रक्स नॉर्मली प्रोटेस्ट हैंडल के लिए यूज होते हैं, उन्हें इस बार लोगों को ठंडा करने के लिए सड़कों पर उतार दिया गया है। सोचो जरा, लोग लाइन लगाकर खुद कह रहे हैं, ऑफिसर इधर भी एक शावर प्लीज। अब ये हुई ना पब्लिक सर्विस विद अ स्प्लैश वाली बात। और अच्छी बात ये है कि अगले कुछ दिनों में बारिश की भी उम्मीद है, तो होपफुली वेदर जो है वो थोड़ा सा चिल मोड में आ जाएगा। वैसे तुम अपने आप को इस हीट में हाइड्रेटेड रखना, सनस्क्रीन लगाना, और अगर चाय पीनी है तो एसी के नीचे बैठकर पीना, क्योंकि जर्मनी नहीं है यहाँ पर तुम्हारे ऊपर पानी की बौछार नहीं होने वाली। और वैसे ये इंडिया भी नहीं है जहाँ पर प्रोटेस्ट्स के ऊपर पानी की बौछार हो जाती है। और ऐसी बात पर मैं तुम्हें टाटा बाय बाय कहती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी बकबक तुम्हें पसंद आती है, मॉर्निंग की मस्ती पसंद आती है, तो फटाफट से जाओ मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। हाँ, मेरा ही हैंडल है। और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर भी लिख लो, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244। मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Radio Mitri New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi, it's hot.
2: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
3: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गुलाम मोहम्मद कासिर नाम के शायर हैं, उनका ये शेर है। और आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो बढ़िया सी स्माइल दीजिए, उसके बाद ये जो हम गाना सुनने वाले हैं नाइट इन लंदन का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज में, इस गाने का वीडियो देखिए। अगर आपको 60s वाला लंदन देखना है, बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। इनफैक्ट जब मोहम्मद रफी साहब इस गाने की शुरुआत करते हैं ना ओ माई लव से, उससे पहले जो गिटार बज रहा है वो इस गाने के वीडियो में एक नाव पे बैठा गोरा बजा रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना क्या बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: कौन?
4: हेलो विपिन।
3: कौन बोल रहा है?
4: इस्ता मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ पासपोर्ट अप्लाई किया था।
4: आहिस्ता बोलो आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
4: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
3: अभी पहले किया था।
4: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन की थी।
4: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
3: जाना जरूरी है?
4: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई।
4: अच्छा तो दुबई जाना है?
3: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
4: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
3: हाँ ठीक है ठीक है,
4: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
3: आपने सही कह रहे
4: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
3: बताओ।
4: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
4: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
3: करवा देना भी है
4: आपसे। मरवाओ के क्या उठ जाएंगे।
3: सॉरी सॉरी सॉरी।
4: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
3: ओके ओके
4: आई लव यू।
3: आई लव यू टू।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

पुरानी फिल्में जिनकी शूटिंग अब्रॉड में हुई है उनमें से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली शॉर्ट फिल्म्स इज इवनिंग इन पेरिस। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, एंड द क्रेडिट गोज टू फिल्म के सिनेमाटोग्राफर गोपी कृष्ण। डायरेक्टर शक्ति सामंता को भी क्रेडिट जाता है। इनफैक्ट ये ना सुनने में आता है कि पेरिस में इस फिल्म की शूटिंग के लिए शक्ति सामंता सिर्फ 10 लोगों को लेके गए थे, क्योंकि तब पेरिस जाके शूटिंग करना बहुत बड़ी बात होती थी भाई। और ये भी सुनने में आता है कि जो जो लोग इस यूनिट में शामिल थे ना 10 लोग, उनको जो पेमेंट की गई थी वो काफी कम थी। क्या पेरिस घुमा दिया ना, पैसे काहे को मांग रहे हो। अच्छा, इसका जो टाइटल ट्रैक है ना, एन इवनिंग इन पेरिस, ये फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स का सॉन्ग है। तो कई लोगों के साथ उस टाइम ऐसा हुआ कि जो थिएटर लेट पहुंचे उन्होंने गाना मिस कर दिया, तो उन्होंने दोबारा से मूवी देखी वो गाना देखने के लिए। मस्त पेरिस की गोरियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं शम्मी कपूर साहब इस गाने में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। अजी ऐसा

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट गाना।

अफ्रीका में हिंद, ये एक फिल्म का नाम है, आपको पता है? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1939 की ये फिल्म है जिसकी शूटिंग अफ्रीका में हुई थी। तो वैसे अगर आप सोचें तो बाहर अब्रॉड में शूट होने वाली पहली फिल्म इसको माना जाएगा, हिंदी फिल्म की मैं बात कर रही हूँ। फिर 1954 की एक फिल्म नाज भी थी जिसकी शूटिंग अब्रॉड हुई थी, लेकिन जो फिल्म जिसकी शूटिंग एक्सटेंसिवली अब्रॉड हुई थी, यूरोप में हुई थी, वो थी संगम। फिर जिसने बाद में ट्रेंड भी चलाया था बाहर जाके फिल्में शूट करने का, या यू नो वो वाली फिल्में जो आई थी, एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंडन, लव इन टोक्यो। इनफैक्ट लव इन टोक्यो में ना आशा पारेख जी ने कुछ हेयर क्लिप्स यूज की थी, उनको बाद में लव इन टोक्यो हेयर क्लिप्स नाम से जाना जाता था। और इस फिल्म के इस गाने के ऑडियो में जापान का फ्लेवर तो है ही, इसके वीडियो में भी है। यस, इसके वीडियो में आपको 1960s का टोक्यो जापान देखने को मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, ऑन मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: मिड और लेट 60s में ऐसी काफी मूवीज आई थी जो अब्रॉड शूट हुई थी और उनके टाइटल में भी बाहर की सिटीज का नाम था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, जैसे लव इन टोक्यो, एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंदन। और ये ट्रेंड एक्चुअली जिस फिल्म ने शुरू किया था ना, उसके नाम में किसी बाहर के शहर का नाम नहीं था, लेकिन इसकी शूटिंग काफी एक्सटेंसिवली यूरोप में हुई थी। दिस मूवी वॉज संगम, मतलब 1964 की फिल्म में दिखाया जा रहा है कि कपल अपने हनीमून के लिए यूरोप जा रहा है, क्या बात है। पर अभी जो हम इसका गाना सुनने वाले हैं, वो तो अपना यही ऊटी में ही शूट हुआ था। दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग रिटन बाय हसरत जयपुरी, कंपोज बाय शंकर जयकिशन, मोहम्मद रफी की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।
1: मेहरबान लिखूं

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। पर ये गुल जो खिले थे ये कौन से गुल थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये ट्यूलिप्स हैं। तो इस गाने के कुछ हिस्सों की शूटिंग नेदरलैंड्स के लिस्सा शहर के केओकेनहॉफ गार्डन्स में हुई थी ना, जहाँ के ट्यूलिप्स दिखाए गए हैं। भाई दुनिया का ये बहुत ही बड़ा बगीचा है, 32 हेक्टेयर के एरिया में, और कुछ 7 मिलियन फूल यहाँ पे उगाए जाते हैं। इस जगह पे शूट करने का सजेशन यश चोपड़ा साहब को खुद अमिताभ बच्चन साहब ने दिया था, बिकॉज शूट से 1 महीना पहले ही वो वहाँ पे घूम के आए थे। क्या बात है भाई, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बगीचे। इसी बात पे सुंदर सा गाना सुन लेते हैं यहाँ पे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, sakka bana. Ya bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Anji.
4: Vivek ji.
3: Anji, bataiye.
4: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
3: ठीक ही कह रहे हो।
4: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
3: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने हैं। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
4: अच्छा,
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा,
4: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
3: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
4: क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
3: अरे कुछ नहीं यार।
4: नहीं, फिर भी क्या मतलब, काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की।
4: अच्छा अच्छा,
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
4: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
3: हाँ,
4: अभी
3: इन्होंने चिल्लाई तो फिर
4: थोड़ा
3: बहुत।
4: आप कह रहे हो चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
3: मजे आ रहे हैं,
4: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
3: अरे तेरे को मजा आ रहा है, तू मजे ले रहा फोन करके?
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Purani Jeans with Charu, only on

पुरानी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग डायनामिक वाइब्रेंट मेन फिरोज खान साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बंदे ने हिंदी फिल्मों में फॉर्मूला वन कार रेसिंग इंट्रोड्यूस की थी 1972 की फिल्म अपराध में। जर्मनी में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी और बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि द फर्स्ट फिल्म टू गेट शॉट इन अफगानिस्तान वाज खुदा गवाह। नो नो नो नो नो, पहली हिंदी फिल्म जो अफगानिस्तान में शूट हुई थी वो थी 1974-75 की धर्मात्मा। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी जी अफगानिस्तान में बहुत पॉपुलर हो गई थी। उनकी एक झलक पाने के लिए अफगानिस्तान का पटा आने सा तरसता था। वो वैसे इतनी सुंदर थी यार, ऊपर से उनका जो एक कैरेक्टर दिखाया गया था रेशमा इस फिल्म में, वो अलग ही गजब ढारा था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

पुरानी फिल्में और गाने जो फॉरेन लोकेशंस पे शूट हुए, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सो 1970 की पूरब और पश्चिम फिल्म का गाना कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, पिक्चराइज डॉन मनोज कुमार एंड सायरा बानू, ये आपको पता है इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शूट हुआ था। अनदर फिल्म 1970 की प्रेम पुजारी, जो कि देवानंद साहब की फर्स्ट फिल्म एज डायरेक्टर थी, उसका गाना फूलों के रंग से वॉज शॉट इन स्विट्जरलैंड। इनफैक्ट आप जब ये गाना देखो तो उसमें बैकग्राउंड में स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही फेमस होटल ग्रिम्सल होटल भी आपको देखने को मिलता है। फिलहाल तो यहाँ पे गाना ही मिल सकता है सुनने को। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

भाई वैसे तो हिंदी फिल्मों में एक्सटेंसिवली फॉरेन लोकेशंस पे शूट करने का ट्रेंड संगम फिल्म ने शुरू किया, लेकिन और भी बहुत सारी फिल्में थी जो उससे पहले फॉरेन लोकेशंस पे शूट हो चुकी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता बिकॉज इतनी ज्यादा वहाँ पे शूटिंग नहीं हुई थी और वो फिल्में चली भी नहीं थी। जैसे 1960 में शम्मी कपूर साहब एंड पद्मिनी की एक फिल्म आई थी सिंगापुर, जिसका गाना शूट हुआ था सिंगापुर में। फिर 1962 में हांगकांग नाम की एक फिल्म आई थी और उसमें बकायदा बीच साइड पे एक पार्टी चल रही है उस टाइप का एक गाना है जो हेलन जी पे पिक्चराइज्ड है, हांगकांग चीना मीना सिंगापुर ऐसा कुछ गाना है वो। चलिए यहाँ पे हम एक और गाना सुनते हैं जहाँ पे दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड का ही जिक्र हो रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

फॉरेन लोकेशंस में शूट हुई हिंदी फिल्में और हिंदी गाने पुराने वाले। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सो वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स जिसके कुछ पार्ट फॉरेन लोकेशन पे शूट हुए थे, ये थी 1960 की फिल्म कॉल्ड बेवकूफ, जिसमें किशोर कुमार एंड माला सिन्हा थे। इसकी कुछ शूटिंग इटली में हुई थी। ऑल्सो माला सिन्हा एंड धर्मेंद्र स्टारर आंखें फिल्म जो थी, जो कि एक स्पाई थ्रिलर मूवी थी, 1968 की सुपर हिट फिल्म। पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग अगर बेरूट में हुई थी तो वो इस फिल्म की। इनफैक्ट इसका जो गाना है दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, जिसमें फिल्म के तीन किरदार भिखारी बन के घूम रहे हैं सड़कों पे, वो बेरूट की सड़कें हैं। इस फिल्म की शूटिंग जापान में भी हुई है। बट इसका एक और गाना है जो बहुत सुंदर है, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, रवि की कॉम्पोजिशन, लता मंगेशकर की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है?
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
4: ओ मेरी बात
3: कौन
4: सुन,
3: बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो
4: जब डर गया था,
3: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
3: फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
3: वाली बातें कर रहा है?
4: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहे, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर, पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं नहीं मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
3: राइट नंबर ले
4: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर, अरे
4: यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू,
3: मैं
5: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

One of the most iconic Hindi song ever shot on a foreign location is undoubtedly Do Lafzon Ki Hai Dil Ki Kahani. Mirchi sun rahe hain aap Purani Jeans par, main hu Charu aapke saath. Chalo gaane ki video mein Italy mein Venice mein gondola ride hai, bahut sundar hai, jisko by the way film ke director Shakti Samanta ne khud shoot kiya hai, unke kisi assistant ya cinematographer ne nahi. To video to bahut badhiya hai, lekin jis tarah se iske audio mein wahan ki tune wahan ke lyrics ko include kiya gaya hai na, that is so beautiful. Hats off to R.D. Burman. आशा भोसले जी का ये उनका गाया हुआ फेवरेट गाना, कमाल तो लिखा ये आनंद बख्शी साहब ने. और आपको पता है इसमें शुरुआत का जो वो लाला लाला वाला वोकल्स है और वो जो इटालियन में गा रहे हैं, वो एक्चुअली एक इंडियन ने गाया है, उनका नाम है शरद कुमार. तो सुन लेते हैं दिस ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से, पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची.

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
1: पुरानी
0: जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

भाई यश चोपड़ा साहब ने स्विट्जरलैंड की लोकेशंस को इतना पॉपुलर बना दिया कि ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ही वहाँ पे हिंदी फिल्मों की या गानों की शूटिंग की शुरुआत की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, पहली हिंदी फिल्म जिसकी स्विट्जरलैंड में शूटिंग हुई थी वो थी 1964 की संगम। यश चोपड़ा साहब की पहली फिल्म जिसकी शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई थी वो थी 1985 की फासले। बट जिस फिल्म से यश चोपड़ा वाला स्विट्जरलैंड पॉपुलर हुआ वो थी 1989 की चांदनी। और इस पर्टिकुलर गाने को जो शूट किया यश चोपड़ा साहब ने, ये वादियों में बर्फीले पहाड़ों में साड़ी पहन के जो सारी की सारी ये लेगेसी जो है इसकी शुरुआत इसी फिल्म से तो हुई थी। श्रीदेवी ने जो साड़ियां पहनी है वो क्या लगी है भाई, कमाल है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्च।

0: बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि 1964 की मूवी संगम वो पहली फिल्म थी जो फॉरेन लोकेशंस पे शूट हुई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। देखो अगर ट्रेंड सेटिंग की बात करें ना कि जिसने फॉरेन लोकेशंस को ऐसे पॉपुलर बना दिया, देन यस दिस वाज द फिल्म। इसी के बाद वो सारी फिल्मों की झड़ी लग गई थी ना, एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंदन, लव इन टोक्यो, अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन अगर इससे पहले की हम बात करें तो काफी मूवीज थी जिसके कुछ पोर्शंस या गाने फॉरेन लोकेशंस पे शूट हुए थे। जैसे एक तो पूरी फिल्म थी 1939 की अफ्रीका में हिंद, ये पूरी की पूरी अफ्रीका में शूट हुई थी। फिर 1954 की एक नाज नाम की फिल्म थी जिसमें अशोक कुमार थे, इसके कुछ पोर्शंस इजिप्ट में शूट हुए थे। देन 1960 में बेवकूफ नाम की फिल्म जिसमें किशोर कुमार माला सिन्हा थे, वो इटली में उसका कुछ पोर्शन शूट हुआ था। फिर 1960 की सिंगापुर, फिर 1962 की हांगकांग। और इनमें से काफी फिल्मों में ना ऐसा भी होता था कि यूनिट के जिन लोगों को फॉरेन ले जाया जाता था उनको उनकी कोई अलग से पेमेंट नहीं होती थी, या होती थी तो बहुत कम होती थी, कि बोलते थे तुमको अभी विदेश घुमा दिया, अभी और पैसे काहे के मांग रहे हो। चलिए जहां मैं यहां वहां से अब रंगून चलते हैं गाने में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हिंदुस्तान का तेरा तू, हेलो मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

0: बहुत सारे लोगों को ये फिल्म तो समझ ही नहीं आ पा रही।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हूँ आप और मैं बात कर रही हूँ सुरेश त्रिवेणी डायरेक्टोरियल माँ बहन की, जो कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स पे आई, अभी भी स्ट्रीम कर रही है। एंड भाई साहब, आई जस्ट लव द मूवी टू द कोर। सो मेरे हिसाब से इट्स अ बेस्ट रिटन डार्क सटायर अबाउट मिसोजिनी, जो बिना अनाउंसमेंट के इस बात को बहुत अच्छे से थ्रू आउट द मूवी डील करती है। कहानी है एक सिंगल वुमन रेखा की, जिसकी दो बेटियां हैं जया एंड सुषमा, और कॉलोनी वालों के हिसाब से वो सेडक्ट्रेस है, होम रेकर है, एंड इज अ वुमन हु लीड्स मेन अस्ट्रे। इनफैक्ट इस महिला के बारे में र्यूमर्स ट्रैवल फास्टर देन द फैक्ट्स, और इनके कैरेक्टर का बिगेस्ट प्रूफ इज हर स्लीवलेस ब्लाउज। अब जैसा कि हम जानते हैं यार, दिस इज अ पेनफुली इंडियन थिंग, जहां क्लोदिंग इज इक्वल टू मोरालिटी। और हमारे समाज में एक महिला जब विदाउट अपॉलोजी जीना शुरू कर देती है, देन शी इज डेफिनेटली कैटेगराइज्ड एज अ रिबेलियन। द मूवी हैज बीन को-रिटन बाय पूजा तुलानी, जो काफी फनी एंड शार्प है एट द सेम टाइम, एंड बाय द एंड मूव्स यू टू द कोर। एंड मेरी जिन लोगों से बात हुई है अबाउट द मूवी, दे आर नॉट एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड द नैरेटिव्स बीइंग सेट। देखिए, यहाँ दो कहानियां पैरेलली चल रही हैं, एक समाज के आईने से और एक एक्चुअल में जो हो रहा है वो। तो अगर इस पर्सपेक्टिव के साथ आप ये फिल्म देखने की कोशिश करेंगे, देन आई एम श्योर यू विल

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. Na vidva la murga. Milci, murga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Anji.
2: Vivek ji.
1: Anji, bataiye.
2: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: ठीक ही कह रहे हो।
2: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का

0: टूट गया था मेरा वो पीछे लग के, उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
1: अच्छा,
0: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
1: बिल्कुल
0: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखना,
1: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
0: हाँ हाँ, जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे।
1: क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
0: अरे कुछ नहीं यार।
1: नहीं, फिर भी क्या मतलब, फिर काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
0: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस, हमारी मिसेस की।
1: अच्छा अच्छा।
0: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
1: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
0: हाँ, अब इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
1: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
0: मजे आ रहे
1: हैं, बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
0: अरे
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची सॉफ्ट गर्ल एरा से सीधा फियर्सफुल क्वीन। आई एम टॉकिंग अबाउट शर्वरी, जिन्होंने मैं वापस आऊंगा में एक अलग ही किरदार निभाया ऑल टुगेदर। और अब अल्फा इज हर अपकमिंग फिल्म जो YRF स्पाई यूनिवर्स एंटरटेनर है, और फिल्म से फाइनली शर्वरी के हाई इंटेंसिटी स्टिल्स रिलीज हुए हैं, शोकेसिंग अ पावरफुल एंड फियरफुल साइड ऑफ हर कैरेक्टर। पता ना हो तो बता दूं, इस मूवी में उनके अलावा आलिया भट्ट भी लीड रोल में नजर आ रही हैं। एंड द फिल्म इज सेट टू रिलीज ऑन द 3rd of July, जिसका इंतजार करते मैं तो नहीं थक रही भाई। अजय देवगन की अपकमिंग एक्शन एंटरटेनर चौहान की बात कर लेते हैं, बिकॉज इट हैज बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड। फिल्म का फर्स्ट लुक हैज बीन अनवील्ड और ये 1st of October 2027 को रिलीज होगी, विच लुक्स इंटेंस एंड इंट्रीगिंग एट द सेम टाइम। बाकी सोने पे सुहागा वाला फील तब मिला जब जुम्मा चुम्मा दे दे ये वाला गाना एज अ रेफरेंस इस मूवी में इस्तेमाल किया गया। बाकी डायरेक्टर नीरज यादव की इस फिल्म के बारे में आगे कुछ डीट्स मिलते ही आपको जरूर बताऊंगी। Another movie in the franchisee list. Well, मैं बात कर रही हूँ about this upcoming highly anticipated film धमाल 4, जिसका गाना साड़ी सॉन्ग रिलीज किया गया एक ग्रैंड इवेंट में इन अ मॉल इन थाने। Well, इस लॉन्च इवेंट पे रितेश देशमुख के साथ साथ अंजलि आनंद ने मस्त परफॉर्मेंस भी दिया। एंड नॉट टू मेंशन, ये गाना इज द रिक्रिएटेड वर्जन ऑफ आइकॉनिक मराठी सॉन्ग गुलाबी साड़ी, जिसे गाया और कंपोज किया है संजू राठौड़ ने। बाकी इंद्र कुमार डायरेक्टोरियल ये फिल्म 10th of July को रिलीज होने वाली है, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: जिंदगी ने आपके साथ इतने सारे गेम खेले, अब आप जरा जिंदगी के साथ फन वाला गेम खेल लो यार।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप, एंड नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द मिर्ची फिल्मची ऑफ द डे। सो जो लोग मेरे शो को सुनते हैं, दे ऑलरेडी नो कि आप मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर भेजते हैं और मैं आपको कॉल करके ये बॉलीवुड गेम की शुरुआत करती हूँ। देर आर अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जिनके जवाब देने पे आपको ये मिर्ची फिल्मची का टैग मिलता है। तो सबसे पहले आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं दीपक जी। कैसे हैं सर? मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो क्या आप मिर्ची फिल्मची बनने के लिए तैयार हैं आज?
2: कोशिश करते हैं।
0: क्या बात है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल है, अनन्या पांडे की डेब्यू फिल्म का नाम क्या है?
2: स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट टू।
0: क्या बात है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट टू में लोग रो यानी कि रोहन किसको बोलते हैं?
2: टाइगर श्रॉफ होगा।
0: टाइगर श्रॉफ की किस फिल्म में विसल बजा गाना है?
2: पहली वाली हीरो पंक्ति।
0: हीरोपंती की फीमेल लीड का नाम क्या है?
2: कृति सैनन।
0: कृति सैनन का डबल रोल किस फिल्म में है?
2: डबल रोल ये काजोल के साथ आई थी।
0: हाँ, सही जा रहे हैं।
2: तीन पत्ती था क्या था?
0: तीन पत्ती तो नहीं था, लेकिन पत्ती से ही रिलेटेड था।
2: दो पत्ती।
0: हाँ,
3: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? नाटी नाटी मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप। एंड यस, इट्स टाइम टू फाइंड अनदर मिर्ची फिल्म ची। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, मैं आपको कॉल करती हूँ एंड देन आई आस्क अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। अगर जवाब सही सही हुए तो आपको डेफिनेटली ये टैग मिल जाता है। तो सबसे पहले आज ये गेम हमारे साथ खेला है दीपक जी ने, बट वो एक पॉइंट पे अटक गए थे। बट आगे अब हमारे साथ गेम कम्प्लीट करने के लिए देयर इज दिस पर्सन। किससे बात हो रही है?
3: सौरभ से।
0: सौरभ जी कैसे हैं आप?
3: बस बढ़िया।
0: तो क्या आप ये गेम आगे कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ?
3: कोशिश कर सकते हैं।
0: तो फिर सवाल यही है कि बिपाशा बासु की किस फिल्म में ऐश्वर्या राय भी हैं उनके साथ?
3: धूम टू।
0: धूम टू में एसीपी कौन बनता है?
3: एसीपी वुड बी अभिषेक बच्चन।
0: अभिषेक बच्चन ने धीरू भाई का रोल किस फिल्म में किया है?
3: गुरु।
0: ग्रेट। गुरु की फीमेल लीड का नाम क्या है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या इश्क किस फिल्म में करती है?
3: देवदास।
0: फिल्म में चंद्रमुखी का रोल किसने किया है?
3: माधुरी दीक्षित।
0: माधुरी दीक्षित का घाघरा वाला सॉन्ग किस मूवी में है?
3: ये जवानी है दीवानी।
0: ये जवानी है दीवानी में नैना का रोल किसने किया है?
3: दीपिका पादुकोण।
0: दीपिका की मूवी जिसमें उन्हें लव

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. La fiesta la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानक, मेरे बॉस सो रहे हैं. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पहाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी. फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाजें आ रही है. मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो. आप क्या फायदा है आप बताओ. कब किया था?
2: अभी पहले ही किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से. यार हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा तो दुबई जाना है
2: भाई. जल्दी जाना है. तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा. बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया? वरना ये तो बौखला जाता ना. ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
2: आपने सही कह रहा है.
3: हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है
3: आपसे. मरवाओ के क्या उठ जाएंगे.
2: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो. पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: ओके ओके.
3: आई लव यू.
2: आई लव यू टू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था आपके.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: ये पगला.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार.
7: अब मिर्ची खा.
9: रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.

0: फिल्मों के अलावा इनके कपड़े इनकी पहचान है।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: Well, I'm talking about director duo अब्बास मस्तान, जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे अमेजिंग प्लॉट्स हमें दिए कि आज भी वो हमारे जहन में एकदम तरोताजा है। बट मुद्दे की बात तो ये है बाबू मोशाय, कि अब्बास मस्तान का जो डुओ है ना, उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई हैं विच वर इंस्पायर्ड और समवेयर डाउन द लाइन कॉपीड फ्रॉम सम ऑफ द हॉलीवुड फिल्म्स। और आज पांच का पंच के लिए उसके थ्रू मैं उनके ऐसी ही कुछ पांच फिल्मों की बात कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट बाजीगर। नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट बादशाह, जो 1999 में रिलीज हुई थी विद शाहरुख खान एंड ट्विंकल खन्ना इन द लीड रोल्स। और इस फिल्म का जो कोर प्लॉट था ना, वो एक नहीं बल्कि दो हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर था, पहला निक ऑफ टाइम एंड दूसरा रश आवर। लेकिन एक बात तो सच है, आज भी जब भी मैं ये मूवी देखती हूँ तो मुझे मजे बहुत आते हैं। अब वो फ्लाइट वाला सीन हो या फिर छिपकली शूज पहन के शाहरुख खान का दीवार के ऊपर चढ़ना। खैर, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर तीन पे चोरी चोरी चुपके चुपके के बारे में, जो साल 2001 में आई थी। वेल, दिस मूवी इज इंस्पायर्ड बाय अ जूलिया रॉबर्ट्स रोम कॉम जिसका नाम है प्रिटी वुमन। वैसे चोरी चोरी चुपके चुपके में सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा लीड रोल्स में नजर आए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंस्पायर्ड बाय अ हॉलीवुड मूवी, ये फिल्म एक तमिल मूवी और एक बॉलीवुड मूवी से भी इंस्पायर्ड थी। तमिल मूवी का नाम है अवन अवल अधु और बॉलीवुड मूवी का नाम दूसरी दुल्हन। बट कीपिंग ऑल ऑफ दिस असाइड, द मूवी वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लोर द टॉपिक ऑफ सरोगेसी इन बॉलीवुड। क्वाइट अ स्टेप, राइट? तो बाबू मोशाय, मेरी इस लिस्ट में अभी और भी कुछ मूवीज हैं अब्बास मस्तान की, जिनकी बात मैं करूंगी, बट इन अ वाइल। तब तक के लिए यू

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: हिट पे हिट मूवीज देने वाले भी कॉपी कर सकते हैं।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और आज जिस डायरेक्टर डुओ की बात हो रही है वो है अब्बास मस्तान। स्पेसिफिकली उनकी कुछ ऐसी फिल्मों की विच वर इंस्पायर्ड बाय हॉलीवुड फिल्म्स। इंस्पायर्ड छोड़ो, कॉपी अगर बोले हम तो वो ज्यादा बेटर होगा। खैर, इस लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट बाजीगर। नंबर दो पे हमने बात की बादशाह के बारे में। नंबर तीन पे चोरी चोरी चुपके चुपके। अब बात करते हैं 2001 में आई फिल्म अजनबी के बारे में, जिस फिल्म के लिए अक्षय कुमार को बेस्ट विलन का अवार्ड मिला और साथ ही बिपाशा बासु को बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला। बट एवरीथिंग अपार्ट, सबसे अच्छी बात यह है कि ये फिल्म जो है वो एक एक्चुअल अडैप्टेशन है ऑफ एन अमेरिकन थ्रिलर जिसका नाम है कंसेंटिंग अडल्ट्स। और कसम से इस हॉलीवुड फिल्म का प्लॉट और अब्बास मस्तान के अजनबी का प्लॉट इतना सेम है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको इन दोनों मूवीज में सिवाय लैंग्वेज के और कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। मूविंग ऑन, नंबर पांच पे बात करना चाहूंगी 2008 में आई फिल्म रेस के बारे में। ओके, बट वी हैव टू अग्री कि जो पहली मूवी थी ऑफ दिस फ्रेंचाइजी वॉज एक्चुअली गुड। उसके बाद तो पार्ट टू और पार्ट थ्री में पता ही नहीं क्या हुआ है। खैर, इस फ्रेंचाइजी के पहले पार्ट में सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, कटरीना कैफ और बिपाशा बासु थे, विच वॉज एन अडेप्टेशन ऑफ 1998 की नियो नॉयर कॉमेडी फिल्म गुड बाय लवर। मतलब उस फिल्म की कॉमेडी को अगर हटा दें तो उसके अलावा जितनी भी चीजें उस हॉलीवुड फिल्म में आप देखेंगे ना, वो सब फिल्म रेस में कॉपी की गई है। तो बाबू मोशाए, बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी इंस्पिरेशन के नाम पे अच्छी चीजें कॉपी कर लेते हैं। खैर, अगर ऐसी ही किसी लिस्ट की चर्चा आप भी करना चाहो, देन फील फ्री टू शेयर दैट विद मी।

0: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट हिट हिट हिट गाना,
2: हिट गाना, हिट गाना, हिट गाना।
3: Radio Mirchi, New York. It's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। और फिल्म से फाइनली शर्वरी के हाई इंटेंसिटी स्टिल्स रिलीज हुए हैं, शोकेसिंग अ पावरफुल एंड फियरफुल साइड ऑफ हर कैरेक्टर। पता ना हो तो बता दूं, इस मूवी में उनके अलावा आलिया भट्ट भी लीड रोल में नजर आ रही हैं। एंड द फिल्म इज सेट टू रिलीज ऑन द 3rd of July, जिसका इंतजार करते मैं तो नहीं थक रही भाई। अजय देवगन की अपकमिंग एक्शन एंटरटेनर चौहान की बात कर लेते हैं, बिकॉज इट हैज बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड। फिल्म का फर्स्ट लुक हैज बीन अनवील्ड और ये 1st of October 2027 को रिलीज होगी, विच लुक्स इंटेंस एंड इंट्रीगिंग एट द सेम टाइम। बाकी सोने पे सुहागा वाला फील तब मिला जब जुम्मा चुम्मा दे दे ये वाला गाना एज अ रेफरेंस इस मूवी में इस्तेमाल किया गया। बाकी डायरेक्टर नीरज यादव की इस फिल्म के बारे में आगे कुछ डीट्स मिलते ही आपको जरूर बताऊंगी। Another movie in the franchisee list. Well, मैं बात कर रही हूँ about this upcoming highly anticipated film Dhamaal 4, जिसका गाना साड़ी song रिलीज किया गया एक grand event में in a mall in Thane. Well, इस लॉन्च इवेंट पे रितेश देशमुख के साथ साथ अंजलि आनंद ने मस्त परफॉर्मेंस भी दिया। एंड नॉट टू मेंशन, ये गाना इज द रिक्रिएटेड वर्जन ऑफ आइकॉनिक मराठी सॉन्ग गुलाबी साड़ी, जिसे गाया और कंपोज किया है संजू राठौड़ ने। बाकी इंद्र कुमार डायरेक्टोरियल ये फिल्म 10th of July को रिलीज होने वाली है, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

मॉर्निंग और मंडे की इवनिंग दोनों बिल्कुल अलग लोग होते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और वो इसीलिए क्योंकि मंडे मॉर्निंग में ना हम अलार्म से नेगोशिएट कर रहे होते हैं, कॉफ़ी भी काम जैसी लगती है, और इनबॉक्स देख कर तो लगता है कि अरे रे वीकेंड इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। लेकिन मंडे की शाम तक पिक्चर थोड़ी सेटल हो जाती है, मीटिंग्स हो चुकी होती है, ईमेल्स का शौक भी निकल चुका होता है, और अब बस घर पहुँचने की रेस चल रही होती है। और मुझे ना इसीलिए मंडे इवनिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार ये वीकेंड और नए हफ्ते के बीच का वो प्यारा सा हैंडशेक होता है, एक रिमाइंडर होता है कि चलो एक और नया चैप्टर शुरू हो गया। तो आज ड्राइव थोड़ी आराम से कीजिए, प्लेलिस्ट थोड़ी लाउड रखिए और स्माइल करना मत भूलिए। और मुझे ज़रूर बताइए कि आज की मंडे की शाम को रिलैक्स करने के लिए आपका बॉलीवुड गो टू सॉन्ग कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा बॉलीवुड गो टू सॉन्ग ये रहा आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gambana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, bhai. Wrong number se baat kar raha hai. Wrong number se.
2: Nahi, kaun baat kar raha
3: hai? Pehle bata, wrong number se baat kar raha hai.
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई। रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
3: ओ मेरी बात
2: कौन
3: सुन।
2: बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया तो तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज

0: मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अबे मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूँ रॉन्ग नंबर है।
0: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: हूँ? यार मैं फिर वही बात को लेकर आ गया।
0: नहीं मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
0: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने
1: वाली बातें कर रहा
0: है, मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहे। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
0: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर, पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई ये रॉन्ग नंबर है यार।
0: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
0: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
0: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
1: राइट नंबर ले
0: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर, अरे जा,
0: बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है निकल तू,
1: अबे चल जा, चल काम कर, चल हट।
2: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

दोस्तों, कभी कभी कैलेंडर भी ना प्यारा सा सरप्राइज दे देता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज तो वैसे मंडे है, लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ ना तो इस बार वाला मंडे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि दिमाग को पता है कि इस हफ्ते के एंड में सिर्फ सैटरडे संडे नहीं, 4th of July का लॉन्ग वीकेंड भी खड़ा है। जी हाँ, और बस इतनी सी बात ना पूरे हफ्ते का मूड हल्का कर देती है, क्योंकि ऑफिस तो वही होता है, मीटिंग्स भी वही होती है, ट्रैफिक भी वही है, लेकिन पेशेंस थोड़ा ज्यादा है, कॉफी भी थोड़ी बेटर लग रही है। और शायद इसीलिए, क्योंकि हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं एक काउंटडाउन क्वाइटली शुरू हो चुका है। कोई बारबेक्यू प्लान कर रहा है, कोई रोड ट्रिप, कोई फैमिली के साथ टाइम, और कोई बस 2 दिन बिना अलार्म के सोना चाहता है। जी हाँ, मैं उन्हीं में से हूँ। और मुझे तो लगता है कि एंटिसिपेशन बिना एक हैप्पीनेस ही होती है, क्योंकि कभी कभी वेकेशन से पहले वाला एक्साइटमेंट वेकेशन से भी ज़्यादा मज़ेदार होता है। और वैसे सच बताइए, क्या आप आज फिजिकली ऑफिस में थे या मेंटली ऑलरेडी लॉन्ग वीकेंड पे निकल चुके थे? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर निकल ही चुके थे तो दिमाग में कौन सा गाना बजा रहे थे वो भी बताना, क्योंकि मेरे दिमाग में जो गाना बज रहा है वो ये रहा आपके लिए, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

दोस्तों, सीक्वल्स तब बनते हैं जब ओरिजिनल की यादें ना लोगों के दिल से जाती नहीं। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो कॉकटेल को रिलीज हुए सालों हो गए, लेकिन आज भी उसके गाने जब भी बजते हैं ना, लोग एकदम से उसी दुनिया में वापस चले जाते हैं। और अब कॉकटेल 2 की रिलीज के साथ वही फीलिंग फिर से आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉकटेल 2 ना बिल्कुल भी पहली कॉकटेल जैसी नहीं है। मतलब दुनिया वही है, इमोशन वही है, लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल नया है, कहानी नई है, अंदाज नया है, एकदम नए अवतार में। और शायद जिंदगी में भी ना हम सबको यही बात पसंद है, पुरानी चीजें लेकिन नए अवतार में। क्यों, जब कोई पुरानी पसंदीदा चीज एक नए रूप में वापस आ जाती है ना, तो उसका नया अवतार, नया वर्जन देखने में ना वही मजा आता है। और शायद इसीलिए कुछ लोग आजकल अपनी पुरानी चीजों को भी ना एक नए अवतार में देखना पसंद कर रहे हैं। और इसी थॉट के साथ तनिष्क भी लाया है फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, यानी आप अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी विच इज अबाउट 9 कैरेट बॉट फ्रॉम एनी ज्वेलर्स लेकर जा सकते हो तनिष्क के पास फॉर फुल वैल्यू एंड विद 0 डिडक्शन। And you'll also get an additional $5 per gram on exchange gold with diamond purchases. Terms and conditions apply. तो आज ही विजिट कीजिए तनिष्क न्यू जर्सी एट 1429 ओक ट्री रोड इजलिन और अपने ओल्ड ज्वेलरी को दीजिए एक नया अवतार। और अब देखते हैं कॉकटेल 2 अपने म्यूजिक के साथ कितनी नई यादें बनाता है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट कॉकटेल 2 सॉन्ग, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मेरा फेवरेट गाना बजाते हैं अभी राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कभी नोटिस किया है, लॉन्ग वीकेंड का असली मजा कभी कभी वीकेंड में नहीं, उसके पहले वाले पूरे हफ्ते में होता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, अचानक एक्टिव हो जाते हैं कि यार कितने बजे निकलना है, क्या लेके आना है, वेदर चेक किया है या नहीं। और हर दूसरे इंसान की वही लाइन होती है कि यार अभी तक डिसाइड नहीं किया है, डिसाइड करते हैं। मज़े की बात तो ये है कि आधे से ज़्यादा प्लान्स ना चेंज हो जाते हैं, कभी कभार कैंसिल भी हो जाते हैं, लेकिन उन प्लान्स के बारे में बात करने का मज़ा कभी कैंसिल नहीं होता। और शायद इसीलिए हॉलीडेज हमें सिर्फ ब्रेक नहीं देते, वो हमें किसी चीज़ का इंतज़ार करना भी सिखाते हैं। तो अगर आज ड्राइव करते वक्त आप भी अपने शॉटगन के साथ 4th of July के प्लान्स डिस्कस कर रहे हो, तो एन्जॉय दैट कॉन्वर्जेशन, क्योंकि हो सकता है कुछ साल बाद ट्रिप याद रहे ना या रहे, लेकिन उसकी जो प्लानिंग होती है ना, वो हमेशा याद होती है। और मुझे ज़रूर बताइए कि इस लॉन्ग वीकेंड का सबसे पहला प्लान आपका क्या है, रोड ट्रिप, फायर वर्क्स, फैमिली डिनर, या बस घर पे फुल ऑन रिलैक्सेशन। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम @rjmirchisiddhi SIDDHI, क्योंकि हर प्लान के लिए एक गाना हमेशा होता है। तो चलिए बजाते हैं ऐसा ही एक गाना राइट हियर ऑन मिर्ची आपके लिए, इट्स हॉट।

कभी कभी फेस्टिवल्स हमें सिर्फ सेलिब्रेट करना नहीं, कुछ याद भी दिलाने आते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज एक ऐसा ही खूबसूरत फेस्टिवल है। जी हाँ, आज है वट पूर्णिमा, यानी इस दिन शादीशुदा महिलाएं वट यानी बैनियन ट्री की पूजा करती है और सावित्री सत्यवान की कहानी को याद करते हुए अपने जीवन साथी की लंबी उम्र और सुखी जीवन की प्रार्थना करती है। वैसे तो हम सब ने करवा चौथ के बारे में सुना ही है, तो वट पूर्णिमा भी उतना ही खूबसूरत रिचुअल है। एक बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है जिसमें साथ निभाना और एक दूसरे के लिए खड़े रहने की भावना को सेलिब्रेट किया जाता है। और मुझे तो लगता है यार, इन फेस्टिवल्स की सबसे प्यारी बात उनका मैसेज होता है कि कोई भी रिश्ता ना सिर्फ एक दिन या एक व्रत से मजबूत नहीं होता, वो रोज के उन छोटे छोटे मोमेंट से बनता है। जब हम एक दूसरे को पूछते हैं कि ठीक से पहुंच गए, खाना खा लिया, यार मैं तो वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, चाय बना दूँ, तो कभी कभी प्यार ना इतना सिंपल होता है। और शायद इसीलिए वट पूर्णिमा हो या करवा चौथ, ऐसे फेस्टिवल्स ना हमें एक बार फिर से उन लोगों के लिए ग्रेटफुल होना सिखाते हैं जिनके साथ जिंदगी का सफर थोड़ा आसान, थोड़ा खुश और थोड़ा खूबसूरत लगता है। तो आज किसी गिफ्ट या स्पेशल ओकेजन का वेट मत कीजिए, बस उन इंसान को मैसेज कर दीजिए जिनके साथ ना जिंदगी थोड़ी बेटर लगती है। और जो लोग आज वट पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La fiesta la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Anji.
4: Vivek ji.
3: Anji, bataiye.
4: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
3: या ऑफ कोर्स।
4: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लासे से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े, सारे मज़े लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की।

0: देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: हाँ ठीक ही कह रहे हो।
0: नहीं मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
0: अच्छा
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
0: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखना,
0: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
1: हाँ हाँ जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
0: क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
0: नहीं फिर भी क्या मतलब, काफी चीखियों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस, हमारी मिसेज की।
0: अच्छा अच्छा।
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
0: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: हाँ अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
0: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
1: मजे आ रहे
0: हैं, बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
1: अरे
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

लाइफ में कोई भी चीज़ पहली बार करो ना तो थोड़ी सी ओवरवेलमिंग लगती ही है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और फिर चाहे वो पहली फ्लाइट हो, पहला जॉब इंटरव्यू हो, पहली कार खरीदना हो या फिर पहली बार अपने लिए घर खरीदना हो, यार इतने सारे टर्म्स, पेपर वर्क, ऑप्शंस और डिसीजंस होते हैं ना कि कभी कभी समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। लेकिन जब सही गाइडेंस मिल जाए ना तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी आसान लगने लगती है। और इसीलिए आज हम फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए लाए हैं कुछ एक्सपर्ट टिप्स बाय नन अदर देन मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Ay, ahora va.
1: Ahora va.
0: Hit Gunny.
2: Radio Merchy, New York. It's hot.

दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात है ना कि इस एक लम्हे ने हम सबको जोड़ दिया है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और इसी वक्त न्यू जर्सी में कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही होंगी, किसी के ऑफिस से घर की ड्राइव है, कोई ग्रोसरी लेने जा रहा होगा, कोई बच्चे को पिकअप करके आ रहा है, और शायद किसी की रोड ट्रिप ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। सबकी डेस्टिनेशन अलग है, लेकिन कुछ देर के लिए ना हम सब एक ही गाना, एक ही कहानी और एक ही फ्रीक्वेंसी शेयर कर रहे हैं। और शायद इसीलिए रेडियो मुझे सबसे ज़्यादा खास लगता है, क्योंकि ये सिर्फ गाने नहीं बजाता, ये अलग अलग सफ़रों को कुछ मिनटों के लिए ना एक साथ ले आता है। तो अगर आज मिर्ची आपके सफ़र का हिस्सा बनी है, तो मुझे ज़रूर बताना कि इस वक्त न्यू जर्सी के किस कोने से सुन रहे हो। टेल मी ऑन इंस्टाट आर जे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI, क्योंकि इस पल में हम सब जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस खूबसूरत पल को सेलिब्रेट करते हैं विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

ऑफिस के डेडलाइन से थोड़ा काम डाउन होना चाहते हो तो बस एक चम्मच दीप दही काफी है। शमशांदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और यार ऑफिस के डेडलाइंस, बॉस की बड़बड़ से दिमाग अगर गर्म हो चुका है तो उसे ही कूल करने के लिए दीप दही के साथ एक ठंडी ठंडी लस्सी हो जाए, क्योंकि फार्म फ्रेश, हॉर्मोन फ्री और बिल्कुल घर जैसी टेक्सचर वाली यही है वो दही जो देता है प्योर कम्फर्ट फूड। और अगर लस्सी ना सही, पर अगर रात के डिनर पे एक प्लेट पुलाव और उसके साथ दीप दही के साथ बनाया हुआ वो बूंदी का रायता, ओ हो, बस ऐसा सुकून, ऐसी शांति मिलती है ना कि क्या बताए। तो आज डिनर में हो जाए दीप दही का कूलनेस का क्लासिक फॉर्मूला, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

जून फुल मून सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन उसी चांद को अगर स्ट्रॉबेरी मून कह दिया जाए तो अचानक उसमें एक अलग ही मैजिक होता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे मून स्ट्रॉबेरी जैसा पिंक तो नहीं होता, लेकिन ये नाम नॉर्थ अमेरिका के नेटिव ट्राइब्स ने इस दिन को दिया है, क्योंकि इस वक्त स्ट्रॉबेरी हार्वेस्टिंग का सीजन भी शुरू होता है। लेकिन देखिए ना, एक खूबसूरत नाम ने कितने सारे लोगों को आज रात आसमान की तरफ देखने की एक वजह दी है, और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ नाम सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करते, वो इमेजिनेशन भी क्रिएट करते। जैसे कि गोल्डन आवर सुनते ही शाम और भी सिनेमैटिक लगने लगती है, ब्लू लगन सुनते ही पानी और ड्रीमी लगने लगता है, और चेरी ब्लॉसम सुनते ही फूल से फूल नहीं पूरा एक पोस्ट कार्ड दिमाग में बन जाता है। तो आज की रात स्ट्रॉबेरी मून भी उन्हीं खूबसूरत नामों में से एक है। तो आज रात अगर थोड़ा सा वक्त मिले तो एक बार आसमान की तरफ जरूर देखिए और स्ट्रॉबेरी मून को एंजॉय कीजिए। और मुझे जरूर बताइए कि खूबसूरत चांद को देख के वो कौन सा गाना है जो आपके दिल में इंस्टेंटली आता है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार खूबसूरत चांद को देख के मेरे दिल में तो ये गाना आता है। चलिए बजाते हैं उसे राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो
1: हेलो
0: कौन
1: हेलो विपिन,
0: कौन बोल रहा है?
1: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
0: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
1: आहिस्ता बोलो, कब अप्लाई किया था आपने?
0: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा
1: अरे
0: है।
1: भाई मानो, मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज़ से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे हो, जरा सा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाज़ें आ रही है। मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फ़ायदा है। आप बताओ कब किया था?
0: पहले किया था।
1: अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
0: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी।
1: अरे भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
0: जाना जरूरी है।
1: कहाँ जा रहे हो?
0: दुबई।
1: अच्छा तो दुबई जाना है
0: भाई, जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
1: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
0: हाँ ठीक है ठीक है,
1: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
0: आपने सही कह रहे।
1: हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
0: नहीं बोलना, नहीं बोलना।
1: भाई साहब एक बात बताऊं?
0: बताओ।
1: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
0: तो पागल है क्या?
1: चिल्लाओ मत, ठीक है मैं रखता हूँ।
0: करवा देना भी है आपसे।
1: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
0: सॉरी सॉरी सॉरी।
1: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
0: ओके ओके,
1: आई लव यू।
0: आई लव यू टू।
2: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: ये पकड़ा।

0: शाम शाम तक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका गोल्डन आवर में। दोस्तों देखिए, आज है June 29th और जून खत्म होते होते यार जो वेदर है वो तो बेटर होते जा रहा है, बेटर क्या हॉटर होते जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ जो गोल्ड मार्केट है वो भी काफी सरप्राइजेस दिए जा रहा है। तो चलिए बुलाते हैं आज के गोल्ड डिकोडर सीरीज में हमारे गोल्ड एक्सपर्ट बॉबी बंसल जी फ्रॉम राज ज्वेल्स। नमस्ते बॉबी जी।
1: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू सिद्धि जी। और देखिए, वेदर कितना भी हॉट हो लेकिन गोल्ड आपके 100% फेवर में है। सिद्धि जी, अगर मार्केट रिव्यू की बात की जाए ना, जून के महीने में जब जून का मंथ शुरू हुआ था, सबके हॉलीडेज ग्रेजुएशंस के साथ साथ वेदर तो ऊपर जाता ही है और एक्सपेक्टेड था कि गोल्ड भी ऊपर जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया की पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होते होते थोड़ा सा समय लग रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। June 2nd इसी साल की 2026 की बात की जाए तो गोल्ड $4,500 $4,500 पर ट्राई ऑन ट्रेड कर रहा था। मुझे आपका याद है सिद्धि जी, वो डायलॉग OMG, जी ओ माय गॉड जी, मम्मी याद आ गई थी सोना खरीदने के नाम पे। जब मम्मी ने खरीदा था शायद वही मौका वापस मिल रहा है। आज गोल्ड $4,015,
0: क्या बात है,
1: 10% गोल्ड के प्राइसेस एक महीने में नीचे आए हैं। और दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिएगा, वी कैन नेवर बाय एट द लोवेस्ट एंड सेल एट द हाईएस्ट, मैं हमेशा बोलता आया हूँ। अगर लोगों को लगेगा कि अभी और भी नीचे जाने वाला है तो शायद कोई संभावना होगी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब वो नीचे जाएगा तो आप खरीद पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, सो मुझे लगता है कि गोल्ड में करेक्शन आई है, एंट्री पॉइंट बनता है $4,015 पर ट्राई ऑन्स। आज गोल्ड का प्राइस बैठता है जिसके अंदर आप 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी हो, कलरलेस डायमंड ज्वेलरी हो, नेचुरल सर्टिफाइड कलरलेस डायमंड ज्वेलरी जो 18 कैरेट गोल्ड में स्टडीड होती है, तो 22 कैरेट गोल्ड हो, 18 कैरेट डायमंड ज्वेलरी हो, आप राज ज्वेल्स के साथ 0% में 9 मंथ की फाइनेंसिंग में गोल्ड का प्राइस आज लॉक कर सकते हैं और ज्वेलरी घर लेके जा सकते हैं आज के प्राइस में, और 9 महीने तक पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी हिडन फी और इंटरेस्ट के। तो देखिए, मुझे मेरी ये सलाह है कि हर एक बार प्राइस करेक्शन के अंदर एंट्री पॉइंट बनता है, तो हमारे डॉलर्स में ज्यादा से ज्यादा सोना साथ आ सके उसके लिए राज ज्वेल्स कमिटेड है कि आप आइए आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके हमारी फाइनेंसिंग ऑप्शन को यूज करें, और 9 महीने में अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ भी जाए तो आपको उससे फायदा हो, नुकसान नहीं हो। राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करने के लिए आइए लॉग इन करें RajJewels.com पर। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
0: थैंक यू बॉबी जी। तो देखिए दोस्तों, मौका है, दस्तूर है, गोल्ड के रेट 5,500 के पीक पर जाकर आज 4,000 पर फ्लोटिंग है। बॉबी जी ने हमें ऑलरेडी बता दिया है कि एंट्री पॉइंट तो डेफिनेटली बनता है और वेडिंग सीजन भी फुल स्विंग में है, तो बिल्कुल भी मत चूकिए, आज ही विजिट कीजिए RajJewels.com क्योंकि कई सारे ऑफर्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, मेरे साथ अब मूड को भी थोड़ा सूट पहनाओ और यार डांस के बीट्स पर टाई पहन के नाच लो, क्योंकि एक ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, बात हो रही है बदतमीज दिल। यार इस ट्रैक का चार्म ही ये था कि ये गाना ना सूट में भी पार्टी करवा देता था। बेनी दयाल और शेफाली अल्वारेस की वोकल्स एकदम मिस्चीफ और मस्ती मोड में थी, और प्रीतम का ग्रूव यार ऐसा कि ट्रैफिक लाइट पर भी ना शोल्डर्स हिलने लगते थे। और मज़े की बात तो ये है कि ये जो गाना है यानी बदतमीज दिल फ्रॉम द एल्बम ये जवानी है दीवानी, इस गाने की कोरियोग्राफी रेमो डी सुजा ने की थी, और शायद इसीलिए इस गाने को ना बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी मिला था। सो जी हाँ, अगर आप वो हुक स्टेप कॉपी करते हो तो जी उसके पीछे एक एक्चुअल ट्रॉफी एनर्जी भी है। तो यार आप भी बताना कि बदतमीज दिल पर कभी क्यूट सा मूव किया है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और दोस्तों ये जो गाना है बदतमीज दिल, माने ना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, आपके लिए बजने वाला है अभी। लेकिन यार इस एल्बम के और भी कई सारे गाने हैं जो जिसके बारे में हम बातें करेंगे, और आप भी मुझे बताना ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको हिट लगते हैं, टेल मी ऑन इंस्टा। तब तक के लिए बदतमीज दिल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, एक ऐसा गाना, एक ऐसे एल्बम का कि यार होली का सीजन हो या ना हो, लेकिन ये गाना बजते ही दुनिया रंगों के बैंडविड्थ पर आ जाती है। जी हाँ, बात हो रही है बलम पिचकारी की, फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। वैसे तो यार ये गाना ही इतना, मतलब इतना ज़्यादा अमेजिंग था, क्योंकि इसमें था थोड़ा कलर, थोड़ा केओस, बट फुल ऑन मस्ती। विशाल ददलानी का स्वैग और शलमली की प्लेफुल वोकल बाउंस, यार ये कॉम्बो इस गाने को ना इंस्टेंट फेस्टिवल हिट बना देती थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि रणबीर कपूर ने बताया था कि इस गाने की शूटिंग ऑलमोस्ट 8 दिन चली थी, और धूप के साथ डांसर्स और उनकी एनर्जी लेवल यार फुल ऑन मैराथन टाइप सिचुएशन थी। तो जी हाँ, ये भी मेंशन किया था कि शूट के दौरान ना कुछ तो भांग वाली किस्से भी हुए थे। वेल, ये तो बॉलीवुड है और यहाँ गुलाल के साथ स्टोरीज भी उड़ती है। तो आप भी बताना कि आपका मोस्ट फिल्मी होली मोमेंट क्या था, और वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको भी बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और फिलहाल के लिए सुपरहिट एल्बम का सुपरहिट गाना बलम पिचकारी फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कभी कभार कुछ गानों में कुछ कलाकारों की एंट्री ऐसे हो जाती है कि यार कलेक्टिव रिएक्शन आ जाता है ऑडियंस से, दैट क्वीन इज हियर। तो साहेबान मेहरबान कदरदान रेखा भरद्वाज की आवाज़ में ये जो गाना है घगरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, यार इनकी आवाज़ ने वो एक ऐसी अर्थी टेक्सचर दी थी कि फुल ऑन फोक गाने को भी प्रीमियम बना दिया था। और विशाल ददलानी ने उसमें जो पंच डाला था उसके बाद प्रीतम का कंपोजिशन, मतलब यार देसी मीट्स ब्लॉकबस्टर। तो यार मज़े की बात तो ये थी कि जब लोगों ने इस गाने के बारे में घगरा इस गाने के बारे में बस सुनी थी, तभी पता चल गया था कि माधुरी दीक्षित का ये आइटम सॉन्ग रहने वाला है। और इसके पहले लुक से ही यार ये रिपोर्ट हो चुका था कि रणबीर कपूर के साथ उनका डांस मोमेंट इस गाने में दिखाई देगा, और यही इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, दैट द क्वीन वाज बैक विथ अनदर आइटम सॉन्ग। तो जी हाँ, माधुरी दीक्षित का वो कौन सा ऐसा आइकॉनिक गाना है जो आपके लिए भी फॉरएवर नंबर वन है? मेरे लिए तो ये उस उनके लिस्ट में से एक तो है ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें यार माधुरी को देखते ही मतलब बस मन करता है कि देखते जाओ देखते जाओ। तो शायद इसी के वजह से ये गाना भी हिट बना था फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी। तो चलिए बजाते हैं घाघरा, लेकिन आप भी मुझे बताना विच इज योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। चल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR, और तब तक के लिए माधुरी दीक्षित का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Yabala. Burga, burga. La virbala, burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है।
2: अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात सुन।
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया।
3: नहीं मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
2: रॉन्ग ले रहा हूँ
3: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू,
2: चल काम कर, चल।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शाम लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2013 के एल्बम के उस गाने की जिसके वजह से ना, मतलब सूटकेस पैक्ड हो या ना हो, दिल ऑटोमेटिकली इलाही मोड़ पे चला जाता है। जी हाँ, ये जवानी है दीवानी का गाना इलाही, संग बाय अरिजीत सिंह। वैसे यार मजे की बात तो ये कि अरिजीत सिंह की ब्रीजी ओपन थ्रोटेड डिलीवरी और प्रीतम का लाइट गिटार लेड अरेंजमेंट मिलकर एक ऐसा वाइब क्रिएट करता था जैसे कि यार जिंदगी ना हाँ बोल रही हो। मतलब लिरिक्स भी अमिताभ भट्टाचार्य के एकदम सिंपल से, ऑनेस्ट से और सीधे दिल तक पहुंचने वाले। वैसे तो ये जो गाना है इलाही, इसका रिप्रीज वर्जन मोहित चौहान ने गाया था, क्योंकि यार सेम जर्नी थी लेकिन अलग टेक्सचर था। तो दोनों वर्जन अगर सुनो ना, तो लगता है कि यार एक ही सफ़र को दो नज़रियों से देखा गया है। फिल्म में वैसे रणबीर कपूर के ट्रैवल मॉन्टाजेस ने भी इस ट्रैक को प्योर बैकपैक एंथम बना दिया था। मतलब जब भी ट्रैवल का मन करे ना, ये गाना दिमाग में डेफिनेटली आता है। तो चाहे हेडफोन्स पे सुन लो या फिर अपने गाड़ी में, यार ये गाना कहीं और ट्रांसपोर्ट कर ही देता है। तो चलिए सुनते हैं इस हिट एल्बम का ये अमेजिंग सा गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बताना वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है, वो बजाते हैं यहाँ पर। फिलहाल सुनते हैं इलाही फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनते ही मूड हल्का कर देते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और ऐसा ही फील आ रहा है एक नए गाने से, मस्करा फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। वैसे इसका म्यूजिक दिया है AR रहमान ने, लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने, और गाने को आवाज दी है वेदांग रैना और निलंजना घोष ने। ऑनेस्टली, इस गाने में ना कोई हैवी हार्ट ब्रेक, ना कोई इंटेंस ड्रामा है, इसका चार्म ही उसकी प्लेफुलनेस है। थोड़ी सी शरारत, थोड़ा फ्लर्टिंग वाला कॉन्फिडेंस, और वो फीलिंग जब किसी की एक स्माइल ना पूरे दिन को अमेजिंग बना देती है। और जी हाँ, मस्करा टाइटल भी बिल्कुल परफेक्ट लगता है, क्योंकि यार गाना सुनते वक्त लगता है कि जैसे कि किसी की आंखों की तारीफ हो रही हो, लेकिन वो कॉलेज वाली टीजिंग, वो नज़रों वाली कॉन्वर्जेशन और वो एक्साइटमेंट जब किसी को देखते ही ना मूड ऑटोमेटिकली बन जाए, ना कि कोई पोएटिक हैवी लाइन से। ये जो म्यूजिक है वो रहमान सर का है, लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम रहमान सर के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ग्रैंड मेलोडीज या सोलफुल ट्रैक्स याद आते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने गाने को बहुत ही लाइट और ब्रीजी रखा है। इरशाद कामिल के लिरिक्स और भी ज़्यादा मस्ती और प्यारा बना देते हैं इस गाने को। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि गाना खुद को बहुत सीरियसली लेता ही नहीं है। तो आजकल के इतने सारे रोमांटिक्स ट्रैक है जो यार इमोशंस में बिल्कुल डुबा देते, लेकिन मस्करा में एक अलग ही फ्रेशनेस है। ऐसा गाना जो ड्राइव पर भी चले, फ्रेंड्स के साथ भी चले और रैंडम स्माइल भी दे जाए। तो ऑनेस्टली दोस्तों, कभी कभी ना प्लेलिस्ट को भी ऐसे गाने की ज़रूरत होती है जो दिल को हैवी नहीं, हैप्पी कर दे। तो आज आपके लिए ये गाना बजाते हैं, लेकिन आप भी मुझे बताइए विच इज़ दैट सॉन्ग जिसको सुनते ही आपका मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और बजाते हैं वो गाने यहाँ पर। फिलहाल आपके लिए मस्करा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शाम अलग सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है, और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @ RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।